0: हिंदी में यू नो व्हाट आई मीन।
1: माय गुडनेस, कौन है वो, क्या नाम है उनका?
0: तुमको बता देता हूँ, लेकिन देखो यानी समझी,

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधू और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
2: it's hot.

0: 开会开会开会
1: 89.6
2: It's hot.

0: बात बताओ, क्या कल भागम भाग फिल्म देखी थी?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aajan Show with you. एक बार फिर से खूबसूरत से दिन की शुरुआत जो है ना, हमारी जिंदगी में हो ही चली है. लेकिन सच कहूँ यार, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ ना बहुत फास्ट भाग रही है. अगर वक्त के सिनोनिम को कुछ देखने की कोशिश करूँ तो उसका मतलब है स्पीड. मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले हमारी निगाहें अगर किसी चीज़ में जाती है तो वो है हमारा फ़ोन, मैसेजेस, व्हाट्सएप, डेडलाइंस, ट्रैफिक, मीटिंग्स, कितनी सारी बातें ना. एंड फिर रात होते ही लगता है कि यार पूरा दिन कहाँ क्या पता ही नहीं चला. और शायद इसी भाग दौड़ के बीच, इसी भागम भाग के बीच हम लाइफ की छोटी छोटी ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो है ना, उन्हें मिस कर देते हैं. वो सुबह की हवा, आपके बच्चे की मुस्कान, घर की आवाज़, चाय की वो पहली सिप, या खुद के साथ ही बिताए हुए वो दो मिनट. तो यार आज ना एक काम करते हैं, लेट अस स्लो डाउन अ लिटिल. आफ्टर ऑल लाइफ कोई रेस तो नहीं. और इसी पे मैंने कुछ तो लिखा है, सुनाती हूँ. जिंदगी को थोड़ा आसान तो होने दो, सुबह को जरा आराम से होने दो. हर पल में यूं भागना जरूरी तो नहीं, कुछ लम्हों को बस मुस्कुराकर जीने दो. तो बस इसी मुस्कान के साथ करते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स की शुरुआत. एंड अगर आपको लगी ये बात अच्छी लगी तो मुझे जल्दी से एक गुड मॉर्निंग मैसेज तो भेज दें, 5000 1896. लेट्स गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. La vizba la murga. Milci, murga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Motor se bol rahe hain?
1: हाँ जी
2: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
1: ठीक है सर,
2: 5 सेकंड जल्दी।
3: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: प्लीज जल्दी बुला लो।
1: सॉरी, कोई कस्टमर के लाए गाड़ी में। हेलो
2: हेलो, होल्ड नहीं कर सकता। हेलो,
4: हाँ जी सर।
2: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो।
2: एक सेकंड।
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर।
2: एक सेकंड रुकिए।
4: सर साइड में, लेफ्ट साइड में।
2: ओ यार, मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
4: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
2: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए। ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
4: हाँ जी।
2: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
4: मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
2: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
4: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
2: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा है, कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
4: हाँ जी।
2: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
4: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
2: क्या करूँ?
4: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
2: एक सेकंड रुकिए।
4: क्या हो गया?
2: आए, गाड़ी ठुक गई। गाड़ी ठुक गई।
3: मैडम, क्या नाम है आपका?
1: दिव्या।
3: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
1: I was so tense, I thought what happened.
0: कुकड़ों को मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's hot.
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
0: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
6: आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अरे अरे, किचन और ऑफिस नहीं बल्कि इस वक्त रेड कार्पेट और क्राउन कर रहा है आपका इंतजार।
1: मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. To all the wonderful mommies who are connected with me at the moment, बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि इस वक्त बेल एंड पाटा चकला और फाइल्स नहीं बल्कि क्राउन और रेड कार्पेट आपका इंतजार कर रहे हैं. Because Mirchi Mommy Award Season 5 is back and it is going to be the biggest and boldest edition until now. What are you waiting for? फटाफट से एक मिनट की रील आपको बनानी है अपने बच्चे के साथ और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000 1896. एंड अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको मिलेगा मौका कि आप ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बन सकें और इस मैजिकल मोमेंट को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में शामिल कर सकें. सो फटाफट से एंट्रीज भेजिए, थर्सडे के अंदर अंदर ही भेजनी. स्टेडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: इस गाने को गाया और कंपोज किया है अदनान सामी ने और लिरिक्स लिखे हैं महिमा भारद्वाज ने, फीचरिंग अदनान सामी एंड भाग्यश्री लिमाई। सुनते रहिए लिपस्टिक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: तो इस लिस्ट को टॉप करने में ना हमारी कोई दिलचस्पी नहीं।
2: मिर्ची अंशु।
1: Welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. यार जिंदगी में ना हमें अक्सर यही सिखाया गया है कि जो करो दिल से करो एंड नंबर वन आने की पूरी कोशिश करो। देखिए पहली बात तो समझ में आती है कि जो करो दिल से करो, नंबर वन वाली बात जो है मुझे अक्सर हमेशा समझ में नहीं आती। एंड ये मेरी बात वो लोग जरूर समझेंगे जो पढ़ाई में जरा एवरेज हुआ करते थे, बैक बेंचर हुआ करते थे, लेकिन हाय लोगों के दिलों को सही मायने में तो हम ही ने टॉप किया था भाई। इवन से इस वक्त अगर टॉपर की मैं बात करूँ तो टेम्परेचर के मामले में आपको पता है दुनिया में वो कौन सी जगह है जो अभी तक का हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड कर चुकी है? दैट इज डेथ वैली कैलिफोर्निया एंड द हॉटेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर एवर वॉज 56.7 डिग्रीज। भाई साहब कतर में हम रहते हैं, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं कि इस लिस्ट को हम टॉप करें, हमें जितना मिला है हम जो है इस वक्त उसी को बर्दाश्त कर लें, ये बहुत है। वैसे टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 43, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 32। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, छास पिए, मिंट वाटर पिए एंड कलेजन दिमाग के ठंडक के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट। बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: यार ये पर्टिकुलर मोड तो उस वक्त आपकी जिंदगी में ऑन हो ही चुका होगा।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, Thursday हमारी life में आए and weekend mode on ना हो तो फिर क्या ही हो? Having said that, इस बार का weekend कतर में बहुत ही ज़्यादा exciting है because बहुत सारे entertaining events हमारे लिए lined up है. अब, entertainment तो एक तरफ की बात है. दूसरी तरफ बहुत सारा खजाना है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा. चलिए एक ही जगह की बात करें, यानी कि दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर. वहाँ पर इस वक्त चल रहा है दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर एंड भाई साहब इस वक्त ना किताबों का सैलाब है. तकरीबन 1.8 million books, 36 participating countries, 900 से ज्यादा बूथ, और क्या ही चाहिए. जाइए कुछ सीख कर आइए. अविंग सिद्धार्थ बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूं तो जेन्युइनली यकीन ही नहीं होता कि हम ही वो लोग थे जो इतनी मोटी मोटी किताबों को चट कर जाया करते थे. भाई कैसे पढ़ लिया हमने. और यार मुझे तो याद है

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन,
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
2: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private

0: देखिए झाड़ू चप्पल बेलन इसका स्किल तो बहुत दिखा दिया, अब जरा क्वीन की तरह रैंप में वॉक कर अपना अगला स्किल दिखा ही दे।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. सच कहूँ, मम्मी जो होती है ना, ये सर्वगुण संपन्न होती है, जहाँ पर एक तरफ झाड़ू बेलन चप्पल के साथ इसे रौद्र रूप धारण करना आता है, तो वहीं दूसरी तरफ रैंप में क्वीन की तरह वॉक कर वो नजाकत कैसे दिखाना है ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है। बस इसीलिए तो हर एक मॉमी होती है सुपर मॉमी। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी मम्मी भी बस सुपर मॉमी है, तो अब मिर्ची मॉमी बनने का वक्त जो है वो आ ही चला है। वेल, मिर्ची Mommy is back with its biggest and boldest edition. Absolutely, we are talking about edition 5. And अगर आपको लगता है मिर्ची के सबसे खूबसूरत इवेंट का आपको हिस्सा बनना है, तो what are you waiting for? फटाफट से एंट्रीज भेजने की तैयारी आप कर ही ले। आपको भेजना होगा एक वीडियो, 1 minute reel that will basically depict the beautiful bond that you carry with your child. It could be anything, any funny video, compilation of beautiful memories, dance, drama, music, poetry, जो भी आपको पसंद है। आपके और आपके बच्चे का बॉन्ड जो है उस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट होना चाहिए। फिर क्या है, अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको ऑडिशंस के लिए बुलाया जाएगा। एंड ऑडिशंस में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स फाइनली पहुंच जाएंगे ग्रैंड फिनाले में। वो रैंप वॉक होगा, वो रेड कार्पेट होगा, वो खूबसूरत सी मेमोरीज होंगी, बहुत सारे इवेंट्स होंगे। एंड उसके बाद फाइनली एक मॉमी बनेगी, मिर्ची मॉमी यानी कि सुपर मॉमी। एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। 5000 1896 एंट्रीज भेजने का लास्ट दिन है थर्सडे। फटाफट से पार्टिसिपेट करें एंड बस मिर्ची के प्लेटफॉर्म में अपने हुनर को दिखाने के लिए तैयार हो जाए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय
2: Mirchi Mornings, brought to you by KIMS Health Medical Center.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vie est pas la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
2: गुड इवनिंग
3: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
2: ओके
3: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज, आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
2: टू टू जा फोर.
3: वेट सर, वेट.
2: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
3: सर यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
2: डर जाएगी.
3: गुड सर, वेरी गुड सर.
2: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
3: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
2: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
3: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
2: पूछो यार.
3: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90
2: पूरे 100.
3: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
2: जेल में जाना पड़ेगा.
3: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
2: समझा नहीं मैं.
3: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1. It's hot.

0: ये एक हफ्ते की दूरी जो है ना सही ना जा रही।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: अरे जब फाइनली ये बात पता चल जाए कि इस वीकेंड तो आप वीकेंड मना रहे हो, अगले वीकेंड तो आप लंबा वाला वीकेंड मनाओगे। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एंड यस, वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते की दूरी है एंड इसके बाद जो वीकेंड आएगा भाई, ईद की खुशियाँ जो है ना अपने साथ लेकर आएगा। एंड आप भी मेरे लिए कुछ लेकर आएंगे यार, घर पर जो शीर कुरमा बनेगा, वो सिवैयाँ बनेगी, आप मुझे वो नहीं खिलाओगे? इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने अच्छे अच्छे गाने, आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखती हूँ, तो आपको भी ज़रा सा ख्याल तो मेरा। वैसे एक बात बताएं, क्या इस वीकेंड ईद की शॉपिंग की ऐसी कुछ तैयारियां, कहीं जाने वाले, कोई खास ऐसी जगह है जहां पर बहुत अच्छे आइटम्स मिल रहे हैं? मुझे बताओ यार, मुझे भी जाना है। एंड पता है, कतर में रहने के बाद सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात क्या हुई, हमें ना डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को जीने का मौका मिला, उन्हें समझने का मौका मिला। मतलब एक छत के नीचे या तो फिर कहीं इस खुले आसमान के नीचे हमने इतने सारे लोगों से मुलाकात की कि सिर्फ अपने अलावा औरों के कल्चर्स भी कैसे होते हैं, हम ना उसमें घुल मिली गए। अच्छा आप मुझे बताएं, कौन सा कैसा कल्चर है जिसके बारे में जानकर समझकर आपको कतर में बहुत खुशी हुई? 5000 1896। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

जानते हैं पैसे का हाल चाल आईपी के साथ। बात करें एक कतरी रियाल इंडियन रुपीस में तो 26.50, और बात करें अगर एक कतरी रियाल लंगन रुपीस में दैट इज 92.91, एक कतरी रियाल बांग्लादेशी टका में बात करें तो 33.65, एंड बात करें एक कतरी रियाल नेपाली रुपीस में दैट इज 42.41, एंड वन कतरी रियाल अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखें तो 76.90। ये हाल चाल था पैसे का।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: यार सच कहूं, ये मुफ्त की छुट्टियों की अहमियत ना बस आप और हम ही समझ सकते हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. Well, मुफ्त की छुट्टियों से मैं बस उन्हीं छुट्टियों को रेफर कर रही हूँ जो हमें हमारे एनुअल वेकेशन के अलावा मिलती हैं. क्या है ना, कतर में आने के बाद समझ में आया ये ईद की छुट्टियाँ, नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल डे, भाई ये सारी छुट्टियाँ कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं. बचपन के दिनों में तो हमने इसकी ज़्यादा इज्जत की नहीं, क्योंकि क्या है ना, भारत हो या पाकिस्तान, जितनी दफ़ा तो हम स्कूल नहीं गए उससे ज़्यादा हमने छुट्टियाँ मनाई हैं. पापा भी ऑफिस कम, घर पर ज़्यादा हुआ करते थे. लेकिन यहाँ पर जैसे ही पता चला था 27th ऑफ मई ऑनवर्ड्स फाइनली ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है जैसे हम सबको ना इस ब्रेक का ना जाने कितने अरसों से इंतजार था. एंड हर कोई मेंटली कहीं ना कहीं पैकिंग शुरू कर ही चुका है. कहीं को ये लग रहा है भैया इंडिया जाना है, घर वालों से मिलके आना है, कोई कहीं घूमने जाने वाला है, और जो यहां यही सोच रहे हैं आराम से एक मैदान से दोस्त यारों के घर जाना है, ईद मनानी है, बाकी टाइम पे सोना है. मेरा मूड तो यही है. हैविंग सेड दैट, इतना ही कहना चाहूंगी जहां भी ट्रैवल कर रहे हैं सेफली ट्रैवल करें. एयरलाइन से अपना स्टेटस जो है वो पूरी तरह से चेक करते रहें, क्योंकि इस वक्त फ्लाइट टाइमिंग्स जो है काफी चेंज हो रही है. पता चला कि फ्लाइट तो ओरिजिनली 7 बजे की थी, ये क्या प्रीपोनो के 3 बजे निकल भी गई. सेफली ट्रैवल करें, स्टेटस चेक करते रहिएगा, लेकिन जब भी जाएंगे जहां भी जाएंगे वहां की अच्छी वाली मिठाई जो है ना हमारे लिए ले ही आए. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय.

0: क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट जाए।
1: हो सवा

पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: लगे।
1: मेरे सहन में तो बस एक ही सवाल आता है कि ये बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस को होस्ट करने के लिए सेपरेट गैदरिंग की क्या जरूरत है, इस गाने की शूटिंग में ही कर लेते।
2: मिर्ची अंशु
1: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. अगर बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म की मैं बात करूँ जो जेन्युइनली हिंदी सिनेमा का सेलिब्रेशन है तो मेरे जहन में आता है ओम शांति ओम, यानी कि ओम और शांति की कहानी, डायरेक्टेड बाय फराह खान। लेकिन इस फिल्म के सबसे क्रेजी पार्ट को अगर आप जूम इन करने की कोशिश करें तो वो था इस गाने का शूट। यार किसी एक गाने में जब 31 बॉलीवुड स्टार्स एक साथ स्क्रीन पे नजर आए भाई, तो आप इसे लाइव म्यूजियम ऑफ बॉलीवुड ना कहें तो फिर क्या ही कहें। डिफरेंट जनरेशंस, डिफरेंट एरास, डिफरेंट सुपरस्टार्स, लेकिन सब ने फराह खान के लिए एक बार शूट के लिए हाँ किया। हर किसी की टाइमिंग अलग थी, हर किसी का स्केड्यूल अलग था, एंड फराह खान का कहना है कि जितना चैलेंजिंग इस गाने को शूट करना था उतना तो पूरी की पूरी फिल्म को बनाना भी नहीं था। लेकिन इवेंचुअली कहते हैं ना, या मुश्किलों के बाद जो सफर और जिस मुकाम पर हम पहुंच हैं उसकी खूबसूरती अलग ही होती है, एंड ये गाना जो है इस बात का लाइव टेस्टमेंट है। हैविंग सेड दैट, किसी अवार्ड फंक्शन को होस्ट करने के लिए ये गाना परफेक्ट मौका था, क्या कहती पब्लिक। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
3: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot. अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
1: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दे. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
0: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल्डाल. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldal.
0: Only on. करता है. What did you steal in your childhood?
1: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दे. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
0: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल्डाल.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldal.
3: Only on Mirchi.

0: हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

0: यार औरों के लिए तो बहुत जी लिया, अब जरा खुद के लिए भी जी ले।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में अगर एक ऐसे शख्स की कहानी बताने की कोशिश करूं जिसने हमेशा खुद से पहले औरों के बारे में सोचा, खुद से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपने घर वालों के बारे में सोचा, तो वो है हमारी माँ। यार चाहे खुद कितनी भी भूखी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा पेट भर जाए ना तो उन्हें जो है तसल्ली एंड खुशी मिल ही जाती थी। खुद जो है कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, लेकिन हम जो है अगर सुकून एंड चैन की नींद सो लेना तो उनकी नींद जो है वो हो ही जाती थी। खुद जो है कितनी भी परेशान क्यों ना हो, हम जो है ज़रा सा मुस्कुरा देना तो उनका दिन जो है वो बन ही जाता था। जिस माँ ने इतना कुछ किया, क्यों ना अब हम उसके लिए कुछ कर लें। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्पेशल इवेंट, दैट इज़ मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5, जो एक बार फिर से हमारी जिंदगी में आ चुका है। देखिए, बात इतनी है, अगर आपको लगता है कि आपकी मॉमी जो है एक सुपर मॉमी है, आप खुद जो है एक सुपर मॉमी है, या आपकी वाइफ एक बड़ी ही प्यारी सी मॉमी है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, फटाफट से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की बारी आ गई है, इस रेड कार्पेट पर चलने की बारी आ गई है, इस इवेंट में बहुत सारी खूबसूरत यादें बनाने की बारी हो गई है। एंट्री के लिए एक ही काम करना है, फटाफट से एक मिनट का रील बनाना है आपको अपने बच्चे के साथ, दैट डिपिक्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड दैट यू बोथ शेयर, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000189 6। रील में होना क्या चाहिए, कुछ भी यार, कोई फनी रील बनाए, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, जो आपको पसंद है, एंड बस हमें भेज दें। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए, ऑडिशन पे बुलाया जाएगा, ऑडिशन में अगर सेलेक्ट हुए तो बस पेजेंट का हिस्सा आप जो है अपने बच्चे के साथ जरूर बनेंगे, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। 5000189 6, वी आर वेटिंग फॉर योर एंट्रीज। डेडलाइन जो है बस इस थर्सडे तक ही है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। मिर्ची फ्रेश माल,
2: देसी स्वैग और हाई एनर्जी डांस वाइब के साथ सुनो, वे आ करवा दो जी।

इस गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विया करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल
2: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है इस नंबर से, गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
1: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल July 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष.
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स. जबरदस्त ट्रैक्स. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
2: 89.6 FM मिर्ची 1. It's hot.

0: यार मुझे एक बात बताना, क्या कभी घर पे सर्कस लगाया है?
1: मिर्ची अंशु
0: नहीं, क्योंकि क्या है ना, हम जब कजिन्स की पलटन मिलते थे तो घर वालों को तो यही लगता था कि लो सर्कस शुरू हो ही गई। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, इस वक्त अगर अपने बचपन के सर्कस एक्सपीरियंस को याद करने की कोशिश करें तो भैया हमारे लिए तो उसका मतलब काफी सिंपल होता था। लायन, टाइगर, मंकीज एंड वो मोटरसाइकिल वाला मौत का कुआं एंड दो चेहरे वाली नागिन। लेकिन साथ में एक जोकर भी था जो कभी कभी हंसाता था या तो फिर कभी डराता था। और सच कहूं, जब भी हम सारे के सारे दोस्त यार या कजन्स मिल जाए ना, तो घर वालों को लगता था कि सर्कस जो है वो घर पे ही शुरू हो गया। लेकिन आज के डेट में सर्कस जो है ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एंड वन सच एक्सपीरियंस इज हैपनिंग इन दोहा एट द मोमेंट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फोंटाना बाय सर्क दू लिबान व्हिच इज हैपनिंग एट हयात प्लाजा टिल 31st of May। वाटर इफेक्ट्स, एरियल परफॉर्मेंसेस, लाइट्स, म्यूजिक, एक्रोबैटिक्स, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक विजुअल एक्सपीरियंस के जरिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? शोज आर हैपनिंग वेंसडेज फ्रॉम 7 PM टू 9 PM एंड थर्सडेज टू सैटरडेज विद टू टाइमिंग्स, 4 PM टू 6 PM एंड 7 PM टू 9 PM। जाइए, एंजॉय करके आइए। एक ही बात कहूंगी, ये जो फोन नामक डब्बा है ना, इसे प्लीज पॉकेट में रखना। अगर पूरा टाइम ऊपर उठाकर उसे स्क्रीन में ही देखना है तो घर में ही देख लेना, ऐसे क्यों जाना। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय
2: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: यार ये छोटी सी जो बात है ना बहुत बड़ा असर छोड़ती है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings. And this is RJ Anshu with you. यार पता है क्या? बचपन से ही ना पापा मुझसे एक बात कहा करते थे कि आप किसी को देखकर उनकी जिंदगी का पता नहीं लगा सकते। शायद जो इंसान हमेशा हंसता हुआ दिखता है अंदर से बहुत टायर्ड हो, जो नॉर्मली रिप्लाई करता है मे बी इज फाइटिंग बैटल्स नोबडी नोज अबाउट, और इसलिए किसी को जाने पहचाने बगैर किसी कंक्लूजन में निकलना ये बहुत गलत बात है। लेकिन पता है क्या इन सबसे ऊपर सबसे खास फीलिंग क्या है? किसी के दर्द को समझने की शक्ति रखना, जिसे हम एम्पथी कहते हैं। कभी कभी लोगों को सोल्यूशंस नहीं चाहिए होते, बस ऐसा कोई शख्स चाहिए होता है जो उन्हें समझ सके। अ लिटिल सॉफ्टनेस, अ लिटिल पेशेंस, अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग, और इसकी शुरुआत सबसे पहले आपके घर से होती है। हमेशा प्रैक्टिकल होना किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। किसी के जज्बात को बस समझ उसे अपना लेना सबसे बड़ा आंसर है। वो कहते हैं ना, हर किसी से दर्द को समझा नहीं जाता, हर किसी से दिल का रिश्ता भी नहीं बनता। जो लोग खामोशी से साथ निभा जाएं, उनसे खूबसूरत कोई इंसान दुनिया में नहीं होता। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कैसे समझाऊँ?
1: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
3: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 9, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: Time checks in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private

0: कि क्वीन तो आप हैं, जरा इस वक्त ये बात आपको महसूस भी करा दें।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. जब तक रानी को वो रानी की तरह महसूस ना कराओ तब तक बात कैसे बने। और अगर जिंदगी की सबसे खूबसूरत रानी की हम बात करें तो वो होती है हमारी माँ। यार हमारी जिंदगी को जिसने पूरी तरह से राजा की तरह बनाया वो हमारी रानी महारानी ना हो तो फिर क्या ही हो। तो चलिए जी, जितनी भी मॉमीज उस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, या आपकी वाइफ एक प्यारी सी मॉमी है, आपकी मम्मी खुद एक बहुत ही प्यारी सी मॉमी है, तो मिर्ची उनके लिए लेकर आया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ना ही वो सिर्फ राइज एंड शाइन कर सकती हैं बल्कि अपने अंदर की उस क्वीन को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5। बिल्कुल, इसकी एंट्रीज जो है अब हम कर रहे हैं एक्सेप्ट। अगर आपको लगता है कि इस पेजेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है, उस रेड कारपेट में आपको वॉक करना है, बहुत सारी खूबसूरत सी यादें अपने लिए संजोनी है, बनानी है, अपने बच्चे के साथ मिलकर एक खास इवेंट का हिस्सा बनना है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। फटाफट से एंट्रीज के लिए आपको एक ही काम करना होगा, एक वीडियो बनाना है, 1 मिनट का रील। इट कुड बी एनीथिंग, यू नो, एक फनी वीडियो हो सकता है, कंपाइलेशन ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज हो सकता है, डांस, ड्रामा, पोएट्री, व्हाट एवर यू लाइक। बस ये वीडियो जो है आपके और आपके बच्चे की खूबसूरत बॉन्ड को डिपिक्ट करना चाहिए, और बस हमें भेजते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896। अगर आप सेलेक्ट हुए तो ऑडिशंस पे आपको बुलाया जाएगा, एंड उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हुए तो पेजेंट यानी कि मेन ऑन ग्राउंड इवेंट में आपको ना ही सिर्फ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, मेमोरीज बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि इसके अलावा ताज भी आपका इंतजार कर रहा है। फटाफट से एंट्रीज भेजे। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ मेरी
1: जी बोल रहा हूँ
2: हाँ जी भाई संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ आपको थाना आना पड़ेगा
1: क्यों
2: मैं आपको यही बता रहा हूँ आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर
1: गए थे जी
2: आपने धरने पे बैठे थे आप
1: जी बैठे थे
2: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था सबके लाठियाँ पड़ी थी आपके रह गई हैं आपकी तीन लाठियाँ लगनी है यहाँ के लगवा लो जल्दी से
1: हाँ बताओ जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे
2: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई कैसा मैं ये नहीं जानता जस्टिस आप वहाँ पे गए थे आप इस बात को मान रहे हो
1: जी जी गए थे जी
2: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे
1: जी जी
2: आपके पड़ी लाठी कोई
1: मेरे तो नहीं पड़ी
2: वही तो मैं कह रहा हूँ आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे वो वहाँ चले जाओ वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी आपके पड़ी नहीं आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से
1: सर आप नाराज क्यों
2: नहीं नाराज क्योंकि बात है बताइए हाँ बताओ
1: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था कहाँ पे बहुत दूर था लाठी
2: तो वही तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई बहुत दूर थे भाई इतने मैं यही तो कह रहा हूँ बहुत दूर खड़े थे आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ
1: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती
2: वही तो मैं कह रहा हूँ यार आप बच गए तीन लाठी रजिस्टर पे चलाइए अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी
1: सर नाराज क्यों है
2: नहीं
1: तो
2: नाराजगी की तो बात है
1: मैं दोस्तों के कहने पे गया
2: तो अब मैं आपसे मैं भी आपका दोस्त हुआ आपको आ जाओ तीन लाठियां मारेंगे आपके छोड़ देंगे आपको यार क्या परेशानी है वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी इसलिए मारनी है भाई जल्दी आ जाओ भाई यार
1: नहीं शाम में आ जाऊंगा
2: यार नहीं नहीं यार मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप हैं मेरे को तमीज सिखा रहा मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई इस बात समझ में नहीं आ रही लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है
1: वो
2: बहुत दूर था नाराज वाली बात है यार ओके चलो लाठी मत करो लाठी नहीं मारेंगे मुर्गा बन जाओ संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तुम अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
1: कुकड़ू को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की
4: तो इंतजार खत्म RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ
3: अभी कॉल करें 3100813 ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
3: FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: वापसी करो तो कुछ ऐसी करो कि दुनिया जो है बस देखते ही रह जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: और कतर ने बस ऐसी ही वापसी करने की तैयारी कर ही ली। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, इस बार अगर समर्स को कतर में देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ एक्साइटिंग है जो आप मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, एंड इस बात की पूरी गारंटी विजिट कतर ने हमें दे ही दी है। चाहे बच्चों की बात करें, उस टॉय फेस्टिवल की बात करें, सर्कस की बात करें, आने वाले वाटर पार्क में बहुत सारे इवेंट्स की बात करें, ये सारी चीजें तो होंगी लेकिन बड़ों के लिए भी सीखने समझने के लिए बहुत कुछ होगा। चलिए अगर प्रोजेक्ट कतर की बात करें, सो 9th से 11th ऑफ जून तक अगर दो एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जाएंगे तो बस आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि फ्यूचर आखिरकार कैसे दिखता है, एंड साथ ही कंस्ट्रक्शन जगत में कतर ने क्या कुछ इनोवेशन किया है। जब रिलीज्ड के अलावा दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, इस बात पर डिस्कशंस करेंगे, एंड हमारे लिए इमेजिनेशन के प्रोसेस को कुछ इस तरह से डिजाइन करेंगे कि फ्यूचर खुद चलकर हमारे प्रेजेंट में आएगा। क्या कहती पब्लिक, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट यू, हाउ इज योर डे कमिंग अलॉन्ग, ये आप मुझे अभी जरूर बताना। 5001896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
6: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
7: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
8: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
9: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
10: बहुत कुछ होगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM।

0: बॉस, जब तुमको एडजस्ट करने में इतना वक्त लगता है तो ये तो फिर भी तुम्हारा शरीर है।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, इस वक्त अपनी जिंदगी को देखने की कोशिश करें तो हमारा पक्का वाला दोस्त अगर कोई है तो वो है एयर कंडीशनर। हाँ जी, इसके बिना जो है हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। घर, ऑफिस, गाड़ी, हर जगह में सबसे पहले अगर कुछ चाहिए भाई एसी लगा। लेकिन इतना बता दूं, समटाइम्स एक्सेसिव एसी एक्सपोजर कैन एक्चुअली मेक यू फील मोर टायर्ड एंड डल ड्यूरिंग समर्स। स्ट्रेन साउंड कर रही हूं लेकिन ये सच है। देखिए होता क्या है, जब आपकी बॉडी जो है कॉन्स्टेंटली मूव करती है ना एक्सट्रीम आउटडोर हीट एंड फ्रीजिंग इंडोर एसी के बीच में, तो आपके सिस्टम को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, कंफ्यूज होता है, जिसके कारण फटीग होता है, ड्राई थ्रोट, हेडेक्स, बहुत सारी चीजें यार। एंड गर्मियों में ना ये बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि बाहर जो है ओवन वाली फीलिंग है एंड घर के अंदर आइसलैंड वाली फीलिंग है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि एसी के टेम्परेचर को बहुत कम कभी भी नहीं रखना। आइडियल कम्फर्ट जोन यूजुअली अराउंड 23-24 डिग्री सेल्सियस। एंड इसके साथ ही डायरेक्टली फ्रीजिंग एसी एयर फ्लो के सामने कभी भी नहीं बैठना चाहिए। अब ये थोड़ा सा सीक्रेट है जो मैंने आपके बीच पेश कर दिया, और एसी का रिमोट जो है कितने थप्पड़ खा रहा है इन दिनों ये आप मुझे बता दो। नहीं, हमने सुना है ना कि जब भी रिमोट काम ना करेगा थप्पड़ लगाओ तो काम करने लग जाता है। 5000-1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टेडियो टू मिर्ची, बदी का नाम अंशु।

0: यार सुनो ना, कुछ करो ना करो, लेकिन इस एक बात को जरूर नॉर्मलाइज कर दो।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। यार ह्यूमन माइंड जो है ना, बड़ा कमाल है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि जो जिंदगी नामक जंग है ना, हर दिन हमें इसमें फतेह हासिल करनी है। लेकिन एक एथलीट से, एक प्लेयर से मैंने यही सीखा है दैट नॉट एवरी सिंगल डे कैन बी अल्ट्रा प्रोडक्टिव, एंड सम डेज आर मेंट फॉर विनिंग एंड सम डेज आर सिंपली मेंट फॉर ब्रीदिंग। जरूरी नहीं यार ये जिंदगी का हर दिन जो है ना एकदम उस सिल्वर स्क्रीन की तरह हो, जहाँ पे सब कुछ ल्यूक्रेटिव, सब कुछ मैजिकल नजर आता है। भाई हो सकता है आज तुम थोड़े उदास हो सकता है आज थोड़े थके हुए हो सकता है आज चीजें वैसी नहीं हुई जैसे तुमने सोचा था, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कल का जब सवेरा आएगा ना, तो सब कुछ बहुत ज्यादा रोशन करके आएगा, और इस बात को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी जीत है। वो कहता है ना, हर दिन बेहतरीन हो ये जरूरी तो नहीं, हर चेहरे पे मुस्कान हो ये जरूरी तो नहीं, कभी खुद को थोड़ा वक्त देकर भी देखो, हर दिन एक जंग हो ये जरूरी तो नहीं। चलिए जी, इसी थॉट के साथ अभी कहती हूँ अलविदा, मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood Bolda, Bollywood Bolda,
1: only on Mirchi, it's hot.
4: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs, sirf making charges pay karke. Aur ab ek aur great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: कट।
7: अबे कौन है?
6: उत्तपा।
7: उत्तपा कौन?
6: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
7: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: all that glitters is not gold, huh? Specifically when it comes to motherhood.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: मिर्ची बिट्यून हूँ आप, और मेरे और आपके जैसा इंसान जो है वो हर दूसरी चीज का इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं बॉलीवुड से लेने की कोशिश करता है, राइट? सो एक चीज जरा दिमाग कान सब खोल के सुनिएगा, इज कियारा आडवाणी का नया इंटरव्यू दैट हैज कम अप विद राज शमानी. क्योंकि उस इंटरव्यू में जो इन डेप्थ बातें हुई है, नॉट जस्ट अबाउट अ रिलेशनशिप बट अबाउट मैरिज, पेरेंटहुड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली postpartum as a mother. जो हमें लगता है ना कि भाई परफेक्ट सेलिब्रिटी मदरहुड इंजॉय कर रहे हैं, दीपिका पादुकोण हो, कटरीना कैफ हो, या फॉर दैट मैटर कियारा आडवाणी हो, बट इन सारी चीजों को एक फुल स्टॉप लगाते हुए कियारा ने कहा कि भाई सबको फिक्र होती है कि हाँ बच्चा कैसा है, वो ढंग से खाना खा रहा है, ढंग से सो रहा है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मदर्स लाइफ. जिस हिसाब से आप जब प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे कहीं ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं आपके पोस्टपार्टम में, एंड दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द मदर्स गो थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज वेल. अब देखो ये सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा एलियन सा लग रहा होगा अगर आपको पोस्टपार्टम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट दैट्स व्हाट वी रिक्वायर, द चेंज दैट वी वॉन्ट टू सी अराउंड. जिस तरीके से कियारा आडवाणी ने इस चीज को लेकर कॉन्वर्जेशन की शुरुआत की है, वी एज इंडिविजुअल्स नीड टू टेक इट फॉरवर्ड. हम मदर्स डे के पोस्ट तो बड़े डाल देते हैं कि हमारी माँ ऐसी, हमारी माँ वैसी, लेकिन क्या सच में हम एक माँ को समझने की कोशिश करते हैं, इज द बिगर क्वेश्चन. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieta la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Yes.
3: Motor se bol rahe hain?
2: हाँ जी
3: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
2: ठीक है सर,
3: 5 सेकंड जल्दी।
4: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो,
3: प्लीज जल्दी बुला लो।
2: सॉरी, कस्टमर के हेलो
3: हेलो
2: बात की,
3: होल्ड नहीं कर सकता। हेलो,
5: हाँ जी सर।
3: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
5: सर पे हैंड ब्रेक खींच दो।
3: एक सेकंड
5: सर, हैंड ब्रेक खींच दो सर।
3: एक सेकंड रुकिए
5: सर, साइड में, लेफ्ट साइड में।
3: ओ यार, मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का था, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
5: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
3: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए, ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
5: हाँ जी।
3: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
5: मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
3: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
5: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
3: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींचना, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
5: हाँ जी।
3: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
5: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
3: क्या करूँ?
5: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
3: एक सेकंड रुकिए।
5: क्या हो गया?
3: गाड़ी ठुक गई।
4: मैडम, क्या नाम है आपका?
2: दिव्या,
4: मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
2: I was so tense, I don't know what happened.
6: मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's hot.
7: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
8: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। दिल राजू की अपकमिंग फिल्म, जिसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं है बट ये जरूर बताया कि सलमान खान लीड रोल निभाएंगे मूवी में, उसके लिए प्रीतिशील सिंह, जिन्होंने धुरंधर फिल्म में मेकअप का दारोमदार उठाया था, उनको रोप इन किया गया है। सो वामशी पिद्दपल्ली डायरेक्टोरियल इस फिल्म में सलमान खान के कैरेक्टर को धुरंधर का टच मिलेगा। दीदी सिर्फ डांस नहीं करेंगी बट इस बार तो गाना भी गाएंगी, बस एक नई कंट्रोवर्सी ना हो जाए इनके इर्द गिर्द। मैं बात कर रही हूँ नोरा फातेही की, जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के साथ साथ गाना भी गाएंगी, दैट टू इन टोरंटो। वैसे ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसकी शुरुआत 11th ऑफ जून को होगी एंड इट इज गोना एंड ऑन माई बर्थडे, दैट इज 19th ऑफ जुलाई, विश करना मत भूलना। ओके ओके, आखिरी सवाल, नहीं पूछना नहीं चाहती हूँ, ये संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म का नाम है जिसका ट्रेलर इज आउट एंड ट्रेंडिंग, एंड भैया ये पहली हिंदी फीचर फिल्म बन चुकी है विच इज मेड एक्सेसिबल इन इंडियन साइन लैंग्वेज, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड ऑडियंस के लिए फीजिबल हो पाए। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर अभिजीत मोहन वारंग एंड इट इज सेट टू रिलीज ऑन द 15th ऑफ मे, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जनिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची स्टोरीज,
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: यार जिंदगी ने तो खेले हैं कई सारे घटिया गेम्स, बट उनको साइडलाइन कीजिए एंड लेट्स फोकस ऑन फिल्मी फेम।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और हर रोज की बात ही, इट्स टाइम टू फाइंड द मिर्ची फिल्मची, जहां मैं एक बॉलीवुड गेम खेलती हूँ आपके साथ। सिंपल सा सवाल आपसे करती हूँ, उसका अगर आप सही जवाब देते हैं देन कम्स अ चेन ऑफ क्वेश्चंस, और फिर जो जहां अटकता है तीसरा इंसान उसके आगे का गेम खेलता है। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति के DMs में स्लाइड इन करके अपना नंबर भेजना होता है एंड आई गिव यू अ कॉल। तो बहुत सारे नंबर्स आए मेरे पास, उसमें से निमिषा को कॉल किया मैंने। हाय निमिषा, हाउ आर यू?
3: ऑल गुड, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया। सो आर यू रेडी टू प्ले दिस बॉलीवुड गेम विद मी?
3: यस।
0: ऑल राइट, सो आपका पहला सवाल है कि रणबीर कपूर की वाइफ का नाम क्या है?
3: आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो किडनैप होती है?
3: हाईवे।
0: ग्रेट। हाईवे के मेल लीड एक्टर का नाम?
3: रणदीप हुडा।
0: रणदीप हुडा की फर्स्ट बायोपिक कौन सी थी?
3: सरबजीत।
0: सरबजीत में उनकी बहन का किरदार किसने निभाया था?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय और सलमान खान की फर्स्ट फिल्म साथ में? कम ऑन, बहुत बड़ा है।
3: हम दिल दे चुके हैं सनम।
0: ग्रेट। हम दिल दे चुके सनम के सेकेंड हीरो का नाम क्या था?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन की फिल्म जिसमें वो 4-सीटर बाइक चलाते हैं?
3: गोलमाल।
0: ग्रेट। गोलमाल का कौन सा हीरो मुन्ना भाई MBBS में भी नजर आया?
3: अरशद वारसी।
0: ग्रेट। अरशद वारसी की फिल्म जिसमें वो लॉयर बने थे?
3: जॉली LLB।
0: और जॉली LLB 2 में कौन से हीरो थे?
3: अक्षय कुमार।
0: ग्रेट। अक्षय कुमार की वाइफ इन गुड न्यूज
3: तो नहीं देखी मैंने।
0: कोई बात नहीं, बट इतना अच्छा जो खेला है आपको ये टैग तो मिलना बनता है यार।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई इससे आगे का गेम कौन खेलेगा मेरे साथ वो मैं पर्ची से डिसाइड करूंगी। ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफैक्ट अगर आपने अभी ज्वाइन इन किया है तो फट से मिर्ची श्रुति के DMs में स्लाइड इन कीजिए ऑन Instagram एंड सेंड मी योर नंबर। क्या पता अगले गेम बाज आप ही बन जाए। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Cut, cut.
5: Who there?
4: Whom are you?
5: Whom are you who?
6: Aray, whom are you looking for, madam?
5: Cut, cut. Who there?
7: Only on 89.6 Mirchi 1.
8: Mirchi.
7: It's hot.
8: It's hot.

0: लाइफ के बोरिंग गेम्स को कीजिए साइडलाइन एंड लेट्स फोकस ऑन फिल्मी फेम।
1: श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: जो आपको मिलेगा इफ यू विन द गेम, तभी तो बन पाएंगे मिर्ची फिल्मची, जिसकी तलाश हर रोज होती है थ्रू दिस बॉलीवुड गेम। तो टुडे आई कॉल्ड निमिषा और वो अटक गई थी ऑन द क्वेश्चन कि भाई अक्षय कुमार की को स्टार इन द मूवी गुड न्यूज कौन थी। Now we have got Sneha on the telephone line. Are you ready?
3: हाँ.
0: All right. So the question was कि अक्षय कुमार की वाइफ का रोल इन द मूवी गुड न्यूज किसने प्ले किया है?
3: करीना कपूर ने।
0: ग्रेट। करीना कपूर की फिल्म जिसका डायलॉग है गुड लुक्स गुड लुक्स गुड लुक्स,
3: कभी खुशी कभी गम,
0: बहुत बढ़िया। कभी खुशी कभी गम में अडॉप्टेड बेटा कौन है?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं?
3: डियर जिंदगी।
0: ग्रेट। डियर जिंदगी की फीमेल लीड का नाम?
3: आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो बिहारी बनी है?
3: उड़ता पंजाब।
0: उड़ता पंजाब में पंजाबी रॉकस्टार का रोल किसका है?
3: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर की डेब्यू फिल्म का नाम?
3: इश्क विश्क।
0: ग्रेट। इश्क विश्क की कौन सी एक्ट्रेस शाहिद के साथ बाद में भी किसी फिल्म में नजर आई है?
3: अमृता राव।
0: अमृता राव की फिल्म जिसमें वो सुष्मिता सेन के साथ है?
3: तुमसे मन के दिल क्या मैं हूं ना।
0: मैं हूं ना में विलन का रोल किसने प्ले किया था?
3: सुनील शेट्टी।
0: सुनील शेट्टी की फिल्म जिसका डायलॉग है अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं। धड़कन की फीमेल लीड कौन थी?
3: शिल्पा शेट्टी।
0: ऑल राइट, तो आपको भी मैं ये टैग जरूर देना चाहूंगी यार।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: देखो एक चीज तो हर दिन प्रूफ होती जा रही है कि सिर्फ मैं नहीं, इंडिया का हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फिल्मची है। देन बी प्राउड ऑफ दैट। एंड कल एक बार फिर से इस गेम की शुरुआत होगी, तब तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी दैट इज मिर्ची श्रुति पे जाके डीएम में स्लाइड इन करके अपना नंबर भेज दीजिए, क्या पता कल आपको कॉल आ ही जाए। फिलहाल तो आगे एक अच्छा सा गाना आ रहा है मिर्ची पे। मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड। इट्स हॉट

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: रिश्ते में तो ये हमारी माँ लगती है। नाम है इनका एंग्री यंग वुमेन।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
3: अब बाबू मोशाय, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें एंग्री यंग मैन तो मिला है, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं एंग्री यंग वुमेन की, क्योंकि भाई औरतों को भी गुस्सा आता है और उनके गुस्से और उनके इस आइडेंटिटी को लेकर भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं हमारी इंडस्ट्री में। एक्टर्स लाइक स्मिता पाटिल, शबाना आजमी और दीप्ति नवल ने ऑलरेडी इस फोटे को एक्सप्लोर किया है बैक इन द 70s। बट आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं आज की डेट के कुछ एंग्री यंग वुमेन की बात करने वाली हूँ। लिस्ट में सबसे पहले लेट्स डिस्कस शिफाली शाह मैम। भाई इनका कैरेक्टर दिल धड़कने दो में हो, जो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा के रिप्रेस करके रखती है, या फिर उनका कैरेक्टर डार्लिंग में हो, जो जनरेशनल रेज को अपने अंदर दबा के रखती है बट अल्टीमेटली उसको इस लिमिट्स तक पहुंचाया जाता है कि उसका गुस्सा निकल ही जाता है। सो ऑल इन ऑल शिफाली शाह एज एन एंग्री यंग वुमन एम्बॉडीज फ्यूरी, जो अक्सर छुपा होता है जब तक उसको निकलने पे मजबूर ना किया जाए। तो बाबू मोशाय, मेरी इस लिस्ट में अभी और चार ऐसे ही एंग्री यंग वुमेन ऑफ बॉलीवुड की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया और कंपोज किया है अदनान सामी ने और लिरिक्स लिखे हैं महिमा भारद्वाज ने, फीचरिंग अदनान सामी एंड भाग्यश्री लिमाई। सुनते रहिए लिपस्टिक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो,
2: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज।
1: गुड इवनिंग
2: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से।
1: ओके
2: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे। राइट फाइन। तो सर आपसे 2-4 सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास 2 मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे। राइट सर, मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे,
1: 2 2 4।
2: वेट सर, वेट,
1: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
2: सर यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा। दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
1: डर जाएगी।
2: गुड सर, वेरी गुड सर।
1: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
2: सर, आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान।
1: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
2: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं। पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले।
1: पूछो यार।
2: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90
1: पूरे 100।
2: ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट। सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर, पोषम मावई पोषम पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
1: जेल में जाना पड़ेगा।
2: ग्रेट सर, ग्रेट। रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
1: समझा नहीं मैं
2: बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा। मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है और ये क्विज उसी का था। जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
3: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार।
3: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां औरतों को गुस्सा आना मतलब कुछ अटपटा हो जाना।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: इनफैक्ट बाबू मोशाय, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी टाइम एंड अगेन इस चीज को प्रूव किया है। मतलब अगर मेल लीड्स की बात करें, उनको अगर गुस्से वाला कैरेक्टर मिलता है तो इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर औरतों की बात करें तो उनके गुस्से को ना एक अलग तरीके से देखा जाता है कि भाई उनका ये जो गुस्सा है वो मेजर्ड होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए और एक लार्जर कॉज के लिए हो तो समझ में भी आता है। ऐसे छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा कैसे हो सकती है कोई महिला? बट कुछ फिल्में हैं और कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने इस चीज को सरपास किया है, और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं वैसे ही कैरेक्टर्स डिस्कस कर रही हूं, एक्टर्स बेसिकली। सो सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट शिफाली शाह मैम। अब नंबर दो पे हम तबू की बात करना चाहते हैं। सो उनका किरदार माचिस में हो, जो ग्रीफ को, पेन को तब तक एम्ब्रेस करती है जब तक वो एक फोर्स में तब्दील ना हो जाए, या फॉर दैट मैटर उनका कैरेक्टर हैदर या अंधाधुन में हो, जो एक डीपली कॉम्प्लेक्स मॉरली एम्बिग्यूस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करती है जिसके साथ ऑडियंस भी एम्पथाइज करने में 10 बार सोचे। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 पे लेट्स टॉक अबाउट विद्या बालन एज एन एक्टर और उनके कैरेक्टर्स। अब वो फिल्म कहानी की बात हो जहां उन्होंने प्रेगनेंसी के स्टीरियोटाइप्स को वेपनाइज किया है, वल्नरेबिलिटी को डिस्गाइज किया है, या फिर शकुंतला देवी का उनका किरदार हो जो अपने जीनियस और अपने एम्बिशंस को यूं ही साइडलाइन नहीं करती। तो बाबू मोशाय, मेरी इस लिस्ट में और दो ऐसी ही महिलाओं की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
3: काश

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा,
9: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अगर समाज के हिसाब से रीजन सही ना हो तो औरतों का गुस्सा जायज नहीं होता।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और बाबू मोशाय, इस चीज को तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी टाइम एंड अगेन प्रूव किया ही है, क्योंकि बहुत सारे मेल एक्टर्स ऐसे गुस्से वाले हमें मिले हैं जिनको लोगों ने वेलकम किया है, उनको अप्रिशिएट किया, उनके टैलेंट को भी सराहा है। लेकिन अगर एंग्री यंग वुमेन ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो थोड़ा मामला डगमगा जाता है। इसलिए आज पांच का पंच की लिस्ट में मैं ऐसी ही महिलाओं को सेलिब्रेट कर रही हूँ। सबसे पहले इन द लिस्ट वी टॉक्ड अबाउट शिफाली शाह मैम, नंबर दो पे हमने तब्बू को डिस्कस किया, नंबर तीन पे विद्या बालन, अब नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट आलिया भट्ट। अब डार्लिंग्स मूवी में उनका किरदार हो, जो पहले विक्टिम होती है और फिर इतना ज्यादा गुस्सा उसके अंदर होता है दैट शी टर्न्स द टेबल और अपना बदला लेती है, या फिर उनका जिगरा वाला कैरेक्टर हो जो जस्टिस के लिए अपने फिजिकल लिमिटेशंस को भी साइडलाइन करके आगे बढ़ती है। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्वरा भास्कर एज एन एक्टर। अब नील बट्टे सन्नाटा में इनका किरदार हो जो अपनी किस्मत से रेजिस्ट करते हुए अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी बदलने का सोचती है, या फिर उनका किरदार लिसन माया में हो जो डिसाइसिवली एक्ट करती है, इनफैक्ट अपने बॉस को थप्पड़ भी मारती है टू प्रोटेक्ट हर बाउंड्रीज। वेल, मेरी इस लिस्ट में अगर ऐसी ही कुछ एंग्री यंग वुमेन आप भी डिस्कस करना चाहो, एड इन करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi, it's hot.
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसे चॉकलेट्स खत्म कर दे कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
1: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: खटखट.
5: कौन है?
4: स्टेन.
5: स्टेन कौन?
4: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ.
5: खटखट. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi,
6: it's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। दिल राजू की अपकमिंग फिल्म, जिसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं है बट ये जरूर बताया कि सलमान खान लीड रोल निभाएंगे मूवी में, उसके लिए प्रीतिशील सिंह, जिन्होंने धुरंधर फिल्म में मेकअप का दारोमदार उठाया था, उनको रोप इन किया गया है। सो वामशी पिद्दपल्ली डायरेक्टोरियल इस फिल्म में सलमान खान के कैरेक्टर को धुरंधर का टच मिलेगा। दीदी सिर्फ डांस नहीं करेंगी बट इस बार तो गाना भी गाएंगी, बस एक नई कंट्रोवर्सी ना हो जाए इनके इर्द गिर्द। मैं बात कर रही हूँ नोरा फातेही की, जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के साथ साथ गाना भी गाएंगी, दैट टू इन टोरंटो। वैसे ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसकी शुरुआत 11th ऑफ जून को होगी एंड इट इज गोना एंड ऑन माय बर्थडे, दैट इज 19th ऑफ जुलाई। विश करना मत भूलना। ओके आखिरी सवाल, नहीं पूछना नहीं चाहती हूँ, ये संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म का नाम है, जिसका ट्रेलर इज आउट एंड ट्रेंडिंग, एंड भैया ये पहली हिंदी फीचर फिल्म बन चुकी है विच इज मेड एक्सेसिबल इन इंडियन साइन लैंग्वेज, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड ऑडियंस के लिए फीजिबल हो पाए। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर अभिजीत मोहन वारंग एंड इट इज सेट टू रिलीज ऑन द 15th ऑफ मे, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: यही सोच रही हूँ, जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा?
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: गर्मी, हाय हाय गर्मी, बस यही होने वाला है। वाले अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी जो है सर चढ़कर डेफिनेटली बोल ही रही है। अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर को हम देखने की कोशिश करें, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 43, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 32। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हवाओं के साथ जो डस्ट की ब्लैंकेट है ना, इससे बच के रहना इस वक्त बेहद जरूरी है। यार पता है मैंने अपने घर पे इतनी डस्ट पहले कब महसूस की मुझे पता नहीं। नहीं, वो जो कई लोग आते हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह, वो इन्हें कॉम्प्लीमेंट जरूर करते हैं। लेकिन यार जोक्स अपार्ट, बहुत ख्याल रखें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, कलेजे दिमाग के ठंडक के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट बंदी का नाम अंशु।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga. Aga.
2: हेलो
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूं? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
2: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
5: आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: इनको तो भगवान ने अलग लेवल पे ही लिफ्ट कराया है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट तेरी ऊंची शान है मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा रे। गेस किया मैं अदनान सामी की बात कर रही हूँ यार, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे कुछ ज्यादा ही प्यार इश्क मोहब्बत मिल रहा है ऑन द लास्ट पोस्ट दैट ही हैज डन, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी तस्वीर डाली है जिसमें उनके टैटूज हैं, वो भी नॉट जस्ट ऑन द हैंड बट ऑन फोरहेड एज वेल, आंखों के किनारे पे, और उसमें उन्होंने जो एस्थेटिक कपड़े पहने हैं, उसके बाद लेयर्ड ज्वेलरी है, विंटेज ड्रामा फील हो रहा है। तो स्पेसिफिकली उनकी ज्वेलरी देख के तो मेरा मन हुआ था बोलो ये सिल्वर ज्वेलरी मुझे दे दे अदनान, लेकिन उधर से जवाब नहीं आता ना। बट एनीवे, ख्वाहिशें बहुत सारी होती हैं इंसान के अंदर, बट फिलहाल तो मैं अदनान सामी की ये जो भी चीज चल रही है उसके पीछे की ख्वाहिश जानना चाहती हूं, क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर सिर्फ एक नजर बट्टू उन्होंने डाल रखा है, बाकी कोई इन्फो नहीं है किसी को भी की वॉट एक्चुअली इज हैपनिंग। तो इस मिस्ट्री का पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी के लिए आगे आने वाले गाने एंजॉय करते हैं ना। मिर्च पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।
3: ओ देखो हो गया फिर, खेल हो गया शुरू, देखो।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

जानते हैं पैसे का हाल चाल आईपी के साथ। बात करें एक कतरी रियाल इंडियन रुपीस में तो 26.50, और बात करें अगर एक कतरी रियाल लंगन रुपीस में दैट इज 92.91, एक कतरी रियाल बांग्लादेशी टका में बात करें तो 33.65, एंड बात करें एक कतरी रियाल नेपाली रुपीस में दैट इज 42.41, एंड वन कतरी रियाल अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखें तो 76.90। ये हाल चाल था पैसे का।

कतरी रियाल बांग्लादेशी टका में बात करें तो 33.65 एंड बात करें एक कतरी रियाल नेपाली रुपीज में दैट इज 42.41 एंड वन कतरी रियाल अगर पाकिस्तानी रुपीज में देखें तो 76.90। ये हाल चाल था पैसे का।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है। ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
3: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: हू दैट?
5: अकबर।
6: अकबर हू?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: खट खट, हू दैट?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: भाई, इन रील्चियों की भी दो अलग कैटेगरीज होती हैं।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पेट्यून हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और रील एडिक्ट्स को मैं रीलची बोल रही हूँ। बेसिकली इसमें ना दो कैटेगरीज एट मेजर मुझे नजर आती हैं, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो दूसरों के हिसाब से रील देखते हैं। आई मीन, अगर ये किसी पब्लिक प्लेस में है तो दे टेक केयर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रील दैट दे आर लुकिंग एट, वॉचिंग बेसिकली। वो या तो म्यूट पे अपनी रील देख रहे होते हैं या फिर उसका वॉल्यूम बहुत ही मिनिमल सा होता है ताकि उनकी वजह से कोई और डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी हो, बिकॉज दे आर द पीपल जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आजू बाजू कौन है, माहौल क्या है। मतलब एकदम से इंटेंस सी कॉन्वर्सेशन कहीं चल रही होगी और अचानक से आएगा नहीं, कि हर बात में नहीं, समझ रहे हैं आप, और वो भी एट द पीक ऑफ द वॉल्यूम लेवल। तो अगर इस दूसरी प्रजाति से आप रिलेट कर पा रहे हैं, देन ब्रो वी रियली नीड टू वर्क ऑन द सिविक सेंस, ठीक है। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: helpline?
1: Mirchi helpline, what is the question?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: मुझे ऐसा लगता है कि अडल्टिंग मींस मुझे वो चाहिए, दैट टर्न्स इनटू हे उस टेबल पर क्या ऑर्डर किया है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. बचपन के वो दिन याद हैं? कितनी नादीदी आंखों से हम दूसरों की टेबल पर देखा करते थे, या किसी का ऑर्डर अगर रेस्टोरेंट में हमारे पास से जा रहा होता था तो फौरन बिना लेफ्ट राइट सेंटर देखे कि कौन देख रहा है और कौन सुन रहा है, हम अपने पेरेंट्स से शिकायत करने लग जाते थे कि मुझे भी वो चाहिए। और ये सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं होता था, ये किसी की घर की शादी हो, किसी के घर का फंक्शन हो, अपने खुद के घर की बात हो, मेहमान खाना खा रहे हो, तो भी हम जोर से ये बोला करते थे कि मुझे भी वो चाहिए। पेरेंट्स के लिए एम्बैरेसमेंट हुआ करता था, मगर हम बिंदास हुआ करते थे, डंके की चोट पे बोला करते थे वो बात। आज भी वो कण हमारी जिंदगी में रह गया है, मतलब हम बदले नहीं है, बस ये है कि हमारे बोलने का तरीका बदल गया। मैंने ये चीज नोटिस करी व्हेन ऑफ लेटली हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए और मैंने ना जो दूसरी हमारी बगल की टेबल थी उनके यहाँ पर देखा कि यार कुछ अच्छा सा दिख रहा है जो भी इन लोगों ने ऑर्डर किया है, मगर ये है क्या? हमने मेन्यू में जब देखा तो हमें तो कुछ इतना इंटरेस्टिंग सा नजर नहीं आया। तो आपस में हम लोगों के डिस्कशंस यही हुए कि फाइनली हम जो वेटर है उनसे पूछेंगे कि भैया ये जो उन्होंने ऑर्डर किया है वो क्या है। वो अलग बात है कि अब हम मुझे भी वो चाहिए वाले जोन से निकल गए हैं, लेकिन वही मैंने कहा ना कि लैंग्वेज बदल गई है, तौर तरीके बदल गए हैं, बात तो वही है, नादीदापन तो आज भी वही है कि दूसरे की टेबल पे क्या रखा है हमें भी जानना और हमें भी मंगवाना है। क्या आप भी ऐसी हरकतें करते हो? तो डीएम करो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ मेरी
1: जी बोल रहा हूँ
2: हाँ जी भाई संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ आपको थाना आना पड़ेगा
1: क्यों
2: मैं आपको यही बता रहा हूँ आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर आपने धरने पे बैठे थे आप
1: जी बैठे थे
2: वहाँ पे लाठी वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था सबके लाठियाँ पड़ी थी आपके रह गई हैं आपकी तीन लाठियाँ लगनी है यहाँ आके लगवा लो जल्दी से
1: हाँ बताओ जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे
2: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई कैसा मैं ये नहीं जानता जस्टिस आप वहाँ पे गए थे आप इस बात को मान रहे हो
1: जी जी गए थे जी
2: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे
1: जी जी
2: आपके पड़ी लाठी कोई
1: मेरे तो नहीं पड़ी
2: वही तो मैं कह रहा हूँ आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे वो वहाँ चले जाओ वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है वो कह रहे हैं सबके लाठी पड़ी आपके पड़ी नहीं आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से
1: सर आप नाराज क्यों
2: नहीं नाराज क्योंकि बात है बताइए हाँ बताओ
1: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था मैं तो बहुत दूर था सर लाठी
2: तो वही तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई बहुत दूर थे भाई इतने मैं यही तो कह रहा हूँ बहुत दूर खड़े थे आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ
1: दूर था तो सर मेरे कैसे लगते
2: वही तो मैं कह रहा हूँ यार आप बच गए तीन लाठियां रजिस्टर पे चलाइए अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी
1: सर नाराज क्यों है मैं
2: नहीं
1: तो
2: नाराजगी की तो बात है
1: मैं दोस्तों के कहने पे गया
2: तो अब मैं आपसे मैं भी आपका दोस्त हुआ आपको आ जाओ तीन लाठियां मारेंगे आपके छोड़ देंगे आपको यार क्या परेशानी है वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी इसलिए मारनी है भाई जल्दी आ जाओ भाई यार
1: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
2: यार नहीं नहीं यार मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई इस बात समझ में नहीं आ रही लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है
1: वो
2: बहुत दूर था नाराज वाली बात है यार ओके चलो लाठी मत करो लाठी नहीं मारेंगे मुर्गा बन जाओ
3: संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तुम अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
1: कुकड़ू को
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है
0: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: ऐतराज मूवी जब रिलीज हुई थी ना तो हमारे बड़ों को भी बड़ा ऐतराज था कि ये फिल्म का तो नाम ही ऐतराज है, हमें बड़ा ऐतराज है कि कोई इस फिल्म को देखे। और इस फिल्म को हमने पता नहीं कब तक नहीं देखा था, क्योंकि ये तो राज ही रह गया था कि किस बात का ऐतराज है।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, इस फिल्म को लेकर बड़ा हो हल्ला मचा था कि अरे इसके अंदर तो ऐसे सीन्स हैं और वैसे सीन्स हैं। और जब बड़े हुए और तब देखा, तब तक तो नॉर्मलाइज हो गया था ये सारा कुछ कि हाँ ठीक है यार, जो है सो है। बट डिड यू नो, इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा का रोल सुभाष घई साहब ने रिकमेंड किया था कि सुष्मिता सेन करे, लेकिन फिर अब्बास मस्तान जो है उनको लगा कि नहीं, प्रियंका चोपड़ा को ही ये रोल करना चाहिए, तो ये रोल उन्हीं के पास गया। And guess what? Priyanka Chopra won the Filmfare Award for Best Villain for her performance. और ये दूसरी वो female actor बनी after Kajol, जिनको कि ये award मिला था, because Kajol ने पहले इसे जीता for the film Gupt, and then उसके बाद Priyanka came in the line. In fact, Priyanka Chopra ने एक interview में भी कहा था कि वो अपने इस character में इतना रम गई थी ना कि उनकी माँ का reaction भी ये हुआ करता था जब वो घर पे एक certain तरीके से behave किया करती थी, तो उनकी माँ भी उनसे यही कहा करती थी कि snap out of it, यानी कि तुम्हारा जो विलेनस कैरेक्टर है जो तुम सेट्स पे करती हो उसे घर पे मत लेकर आओ, जस्ट गेट आउट ऑफ इट एंड बी प्रियंका चोपड़ा रादर देन बीइंग दैट कैरेक्टर एट होम आल्सो। एक बात बताओ, आपके साथ ऐसा होता है क्या? मतलब जो रोल आप अपने ऑफिस में प्ले कर रहे हो, आप घर पर भी आकर कुछ उसी तरीके से बिहेव करते हो? लाइक फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर अ टीचर, तो घर पर भी क्या आप उसी तरीके से सीख दे रहे होते हो या बात करने का तरीका वैसा हो जाता है? अगर आप ऑफिस में बॉस हो एंड यू आर लीडिंग अ टीम, तो घर पे भी आकर क्या आपका यही रहता है मामला कि आप अपने घर वालों को एक टीम बना लेते हो एंड देन यू बिकम अ लीडर एंड यू लीड द टीम? ऐसा कुछ अगर है तो डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Hello shops. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine baba ji se advice li to kehte hain.
2: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
1: Relative se advice slow to kehte hain.
3: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
4: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
5: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अक्षय कुमार, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा की मूवी एतराज, जिस पर की दुनिया को एतराज था. वेल, ये फिल्म काफी बोल्ड मानी जा रही थी अपने जमाने में, और हो भी क्यों ना. आफ्टर ऑल, दिस फिल्म वॉज इंस्पायर्ड बाय अ हॉलीवुड फिल्म.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड यस, ये सच है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो काफी अच्छी तरीके से बेस्ड थी ऑन दी हॉलीवुड फिल्म डिस्क्लोजर, जो कि माइकल डगलस और डेमी मोर की मूवी थी. एंड अगर हॉलीवुड की फिल्म उठा के देख लो ना, तो एतराज तो उसके सामने कुछ भी नहीं है यार. मतलब एतराज तो इंडियन ऑडियंस के हिसाब से काफी ट्वीक कर दी गई है सीन्स के मामले में. हॉलीवुड इज जस्ट बोल्ड एंड बोल्ड. कमाल की बात तो ये थी कि इस मूवी के अंदर प्रियंका चोपड़ा एंड अमरीश पुरी वो प्लेइंग द रोल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. ऑफ कोर्स, क्लियरली अमरीश पुरी की जो एज थी वो उतनी बताई गई थी जिनकी उनकी रियल लाइफ में एज थी, एंड प्रियंका चोपड़ा की भी वही उतनी ही कम एज बताई गई थी. एज गैप कहीं पर भी छुपाया नहीं गया था. मगर मजे की बात तो ये हुई कि उसी साल मुझसे शादी करोगी रिलीज हुई, और वहां पर अमरीश पुरी प्रियंका चोपड़ा के फादर का रोल प्ले कर रहे थे. एंड ये वो टाइम था जब अमरीश जी की हेल्थ जो थी वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रहा करती थी. एंड हुआ ये था कि देयर वाज दिस वन डब सीन जो उनको करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ वो उस डब सीन को कर ही नहीं पाए. और इस बात से एम्पथाइज करते हुए जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस फिल्म को ऐसे ही रिलीज कर दिया विदाउट दैट सीन बीइंग डब्ड. एंड दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट कि प्रोफेशनलिज्म तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रोफेशनलिज्म इंसानियत के बिना अधूरा है बॉस. सो एट सर्टेन टाइम्स प्रोफेशनलिज्म को बैक सीट ले लेनी चाहिए और इंसानियत को फ्रंट सीट ले लेनी चाहिए. ये प्रोफेशनलिज्म का एकदम राइट बैलेंस है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: खट खट।
6: Who there?
5: बंता।
6: बंता who?
5: अरे बंता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
6: खट खट। Who there?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कल मैं मम्मा को कुल्फी खिलाने के लिए लेकर गई थी और उस दुकान पर खड़े खड़े आई वॉज थिंकिंग कि न्यूटेला और वॉफल्स खाने वाले जो जनरेशन है उनको तो कभी यही नहीं समझ में आएगा कि कुल्फी खाने का सेटिस्फैक्शन क्या और कैसा होता है।
0: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वाकई में एक कुल्फी की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू इज द पॉइंट हियर। द मैजिक ऑफ अ देसी कुल्फी इज समथिंग जो गर्मी में ठंडक का एहसास होता है और सर्दी में एक ठंडी कुल्फी का टेस्ट पुरानी यादों की वार्मथ दे रहा होता है। दो आई लव वॉफल्स बट आई कैन नेवर फील द सेम फॉर अ वॉफल जो मैं कुल्फी के लिए फील करती हूँ यार। और एक कुल्फी और वॉफल का जनरेशन गैप उतना ही है जितना की मेरा और मेरे नेव्यू का जनरेशन गैप है। लेकिन कल की वो ठंडी ठंडी मिट्टी की मटकी से निकली हुई कुल्फी जो हाथों में पकड़ते ही थोड़ा पिघलने लगी थी और हर एक बाइट में ठंडक उतार रही थी, उसे एक बाइट में सिर्फ स्वाद ही नहीं था, पूरा बचपन बसा था। ना कोई इंस्टाग्राम के लिए फोटो लेना, ना किसी फैंसी एम्बियंस की जरूरत, बस एक पुरानी सी बेंच, एक थैला और माँ के साथ बैठकर वो कुल्फी का पल, वही काफी था यार। नेवर न्यू कि एक कुल्फी भी इतना कंप्लीट महसूस करवा सकती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको चूज करना है बिटवीन एन आइसक्रीम कोन, अ गोला बर्फ एंड अ कुल्फी, तो आप क्या चूज करोगे? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na
1: virtua la burga. Milci, burga. Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Motor se bol rahe hain?
1: हाँ जी
2: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
1: ठीक है सर,
2: 5 सेकंड जल्दी।
3: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: प्लीज जल्दी बुला लो।
1: सर ये कोई कस्टमर के लाए हेलो
2: हेलो
1: बात की,
2: होल्ड नहीं कर सकता। हेलो
4: हाँ जी सर,
2: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो।
2: एक सेकंड
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो। सर
2: एक सेकंड रुकिए
4: सर, साइड में, लेफ्ट साइड में।
2: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज खाता था, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
4: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
2: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए, ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
4: हाँ जी।
2: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
4: ऐसे मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
2: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
4: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
2: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींचना, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
4: हाँ जी।
2: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
4: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
2: क्या करूँ?
4: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
2: एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए।
4: क्या हो गया?
2: आए, गाड़ी ठुक गई। गाड़ी ठुक गई।
3: मैडम, क्या नाम है आपका?
1: दिव्या।
3: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
1: Oh, God. I was so
5: dead, I don't know what happened. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
5: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: इस गाने को सुनते सुनते मुझे एक ख्याल आया, और वो ये कि बचपन में जब इस गाने को सुना करते थे, जब मोहब्बतें रिलीज हुई थी, तो एट दैट टाइम मैं कितनी छोटी थी, स्कूल में तो थी डेफिनेटली, टेंथ में तो नहीं थी मोस्ट डेफिनेटली, मेरे हिसाब से मैं होंगी फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में। और जब मैं ये गाना सुना करती थी ना, तो मैं इमेजिन किया करती थी कि मैं हीरोइन हूँ और ये हीरो मेरे लिए गाना गा रहा है। बॉलीवुड का म्यूजिक बाय गॉड एक छोटे बच्चे को भी मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता है। नाउ आई कैन क्लियरली से इट्स अ फैक्ट।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, बॉलीवुड के यही गाने तो हमारी लाइफ में फन लेकर आ जाते हैं यार। जहां लाइफ में लो हो, बॉलीवुड के गाने सुन लिए आप हाई हो जाते हो, या तो नॉस्टैल्जिया की ट्रिप पर खो जाते हो। और अभी के लिए फिलहाल मैं भी आपको नॉस्टैल्जिया की ट्रिप पर लेकर जाने वाली हूँ विद मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर 90s या अर्ली 2000 के कोई दो गाने मैं उठा के उनकी धुनें आपके लिए मिक्स करके चलाती हूँ, और आपको गेस करना होता है कि ये दो गाने हैं कौन से। और आज का मिक्स है कुछ यूं।

Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat.

0: एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
1: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
0: क्या होता?
1: रोड साइड रोमियो।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Our business is our business, none of your business.
4: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
2: Qatar का number one radio station.
5: 89.6
6: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब अन्नू जी गाते थे ना तो पता लग जाता था कि अन्नू जी गा रहे हैं, क्योंकि ना एक एक्स्ट्रा एफर्ट होता था उनके शब्दों के अंदर। जैसे जानम समझा करो में गाना था ना, जानम समझा करो, अन्नू जी को कॉपी करना बड़ा आसान होता था, हम बच्चे भी कर लिया करते थे। लेकिन अन्नू जी को हमने कॉपी किया और अन्नू जी ने ये गाना कॉपी किया, जानम समझा करो का ही ये गाना।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And there was this very fun song, जो कि बहुत fast भी था और जिसमें सलमान खान नाचते हुए भी नजर आ रहे थे। And I really loved this track. कौन से गाने की बात कर रही हूँ मैं? सुनो जरा।
3: I was made for loving you, baby. क्या ख्याल है बोल? You were made for...
1: And well, ये गाना is actually a copy of this English track, जो कि 1979 में रिलीज हुआ था और इसका नाम भी I was made for loving you ही था। गाना कैसा साउंड करता है सुनिए जरा। अब वही वाली बात है ना यार, अन्नू जी हो और ऐसा कुछ ना हो कि कहीं से वो गाना आया हो हमारे यहाँ पर मेहमान बनकर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 का कोई ऐसा गाना या मूवी कहीं से कट कॉपी पेस्ट की गई है, तो ऑफ कोर्स फील फ्री टू डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

जान मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
4: खटखट
5: कौन है?
4: अज्जू।
5: अज्जू कौन?
4: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
5: खटखट, who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जोश के बाद मंसूर अली खान ने और कोई फिल्म डायरेक्ट की ही नहीं, मगर ऐसा क्यों?
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। Well, reason सिर्फ एक नहीं है, कई सारे reasons हैं। हुआ ये कि 5 साल जोश को देने के बाद मंसूर अली खान ने ये फिल्म बनाई थी, जो कि उतनी बड़ी हिट नहीं हुई जितनी कि 5 साल देने के बाद होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी उनका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ। दूसरी बात ये कि वो अपने कजिन आमिर खान के साथ बहुत काम किया करते थे, लेकिन वो दौर ऐसा था जब आमिर खान दूसरे डायरेक्टर्स के साथ और दूसरे प्रोजेक्ट में इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे कि मंसूर अली खान की फिल्मों के लिए उनके पास ज्यादा टाइम था नहीं। एंड सो ही इवेंचुअली थॉट ऑफ रिटायरिंग फ्रॉम द जॉब। मतलब अब इसको रिटायरमेंट नहीं माने तो और क्या माने। आई जस्ट होप ही कम्स बैक एंड यू नो ही गिव्स अस अ न्यू फिल्म, बट सो फार ऐसा कोई आइडिया नहीं लग रहा है उनका। बिकॉज ऑफ द रीजन नाउ ही सेटल्ड इन कुन्नूर और वहां पर वो अब फार्मिंग करते हैं। एंड राइट नाउ करंटली इन कुन्नूर ही रन्स अ चीज फार्म बॉस। हो सकता है व्हाइल यू ट्रैवलिंग टू कुन्नूर आपने कोई होम स्टे किया या कोई जगह विजिट करी एंड दैट टर्न्स आउट टू बी मंसूर अली खान्स प्लेस। यू नेवर नो। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
2: गुड इवनिंग
3: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
2: ओके
3: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है, तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज, आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
2: टू टू जा.
3: वेट सर, वेट.
2: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
3: सर यही पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
2: डर जाएगी.
3: गुड सर, वेरी गुड सर.
2: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
3: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
2: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
3: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
2: पूछो यार.
3: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
2: पूरे 100.
3: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषम मावई पोषम पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
2: जेल में जाना पड़ेगा.
3: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
2: समझा नहीं मैं.
3: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर गुलेल,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हारा नाम सोचती हो ना तो चेहरे पर आज तो मीठी सी मुस्कान आती है, लेकिन बचपन में डर आया करता था क्योंकि तुम चीज बड़ी थी मस्त मस्त। जब तुम मेरे भाइयों के हाथ में हुआ करती थी तो मुझे इस बात से डर लगता था कि कहीं ये मुझे निशाना ना बना दे, कहीं कोई चूक ना हो जाए कि मैं उनका निशाना बन जाऊं। और जब तुम मेरे हाथों में हुआ करती थी तो भी मैं इसी चीज को लेकर डरा करती थी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें उल्टा ही चला दूं और मुझे ही चोट लग जाए। अक्सर कई सारी मूवीज में मैंने देखा था कि तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए हीरोज ने फूल लड़की के ऊपर खींच के मारा था। ओए होए होए, मतलब आजकल तो हम बात करते हैं पोस्ट के रीच की, लेकिन बचपन में तो हम सिर्फ तुम्हारी ही रीच चेक किया करते थे कि कहां तक जा रही है। मजे की बात तो ये हुआ करती थी कि तुम कितनी बेसिक और कितनी सिंपल हुआ करती थी और बाजार में मिला करती थी, लेकिन जब कोई हमारे सामने टहनियों को जोड़ के और तोड़ के रबड़ लगा के तुम्हें बना दिया करता था ना, तो हम चौंक जाया करते थे कि ये क्या कर दिया, इतना टैलेंट तुम्हारे अंदर कहाँ से आया, ऐसा सोचा करते थे। हालांकि तुम चीज बड़ी सिंपल थी, लेकिन तुमसे काम सिंपल नहीं हुआ करते थे। मेरे भाई जो थे ना, वो तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए पेड़ों पे से न जाने पत्ते टहनियाँ फूल गिराने की कोशिश करते थे, और ये प्रैक्टिस तब सफल हो जाया करती थी जब हम किसी ऐसी जगह पर पिकनिक बनाने जाते थे जहाँ एक्चुअली पेड़ होते थे और उन पेड़ों के ऊपर फल हुआ करते थे। मजे हमारे होते थे क्योंकि निशाने तो उनके वैसे ही इतने सेट हो चुके होते थे दूसरी जगहों पर प्रैक्टिस करते करते कि अब उनके निशाने एकदम सटीक फलों पे लगा करते थे, और वो फल जब टूट के नीचे गिरते थे वो फल गिराया करते थे, हम उन्हें उठाया करते थे और फिर सारे मिलकर उन्हें खाया करते थे। उफ, क्या जबरदस्त यादें हैं यार तुम्हारी। कभी किसी ने आमले तोड़े तो कभी किसी ने आम, और इन सारी यादों के साथ तुम नहीं रही आम, तुम तो बहुत खास हो गई हो यार। तुम सिर्फ एक खिलौना नहीं थी यार, तुम तो हमारी शरारतों की साथी थी, हम कजिन्स की दोस्ती की पहचान थी, और कभी कभी चैलेंजेस की वजह भी। अब जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है, लेकिन आज भी तुम्हारी रफ्तार याद आती है, तुम्हारे निशाने को आज भी दिल पर लेकर बैठी हुई तुम्हारी याद में तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। यू ट्यून इन टू मिर्ची इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसके

0: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: शान और संजीवनी की आवाज में क्या दिल ने कहा मूवी से ये गाना इज कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: निकम्मा किया इस दिल ने और क्या बात कही है वाकई में। इस बात में तो कोई डाउट नहीं रखना चाहिए हमें मन में कि ये दिल वाकई में हमें निकम्मा कर देता है। और इस बात से तो आप भी राजी हो गए अगर आपने कभी मोहब्बत की है कि जब प्यार होता है ना तो बस प्यार ही होता है और कुछ नहीं हो पाता है। तभी तो लोग कहते हैं कि मुझे वक्त चाहिए, मुझे जिंदगी में कुछ बनने दो, क्योंकि एक बार अगर प्यार हो गया ना तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रेमी बन के रह जाते हो और कुछ नहीं कर पाते हो। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बन जाओ, कुछ कर जाओ, उसके बाद प्यार मोहब्बत के लफड़े में पड़ना। वेल, ये तो हमें स्कूल में कहा जाता था, कॉलेजेस में कहा जाता था, लेकिन बड़े होते होते ना ये बात तो और ज्यादा क्लियर होती चली गई है। सीरियसली, लाइक अब ना हम जो अडल्ट्स हैं और जो सिंगल हैं उनका भी ऐसा ही जोन होता है कि यार नहीं, देखो ऐसा सीन है कि अभी ना इस साल ना मुझे ये अपना जो टारगेट है ये अटेन करना है, तो इस साल तो प्यार व्यार के लफड़े में नहीं पड़ सकते। वो अलग बात है कि हमारे बड़े जो हैं वो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि यार अगर ऐसे करते रहे तो कब प्यार में पड़ोगे और कब शादी होगी तुम्हारी, टारगेट्स ही अटेन करते रह जाओगे। लेकिन क्या करें, निकम्मा तो कर ही देता है ना ये दिल। तभी तो कहा है कि आशिकी चाहता है जिंदगी उजाड़ता है, रोके रुके ना कभी ये किसी की कहां मानता है। अब जब प्यार मोहब्बत होती है ना किसी इंसान को तो वही जानता है कि दिन भर कितने ख्वाब देखता है इंसान। उसका मन तो कहीं लगता ही नहीं है ना यार, ना घर में, ना रिश्तेदारी में, ना दोस्तों में, ना यारों में, ना ऑफिस में, कहीं नहीं, सिर्फ एक ही जगह दिल लग रहा होता है। पूरे दिन उस ख्याल में डूबे रहते हैं और शाम को जब मिलते हैं तो बस उस इंसान के अंदर डूबे रहते हैं और फिर वापस से अगले दिन से वही चक्का चालू। तभी तो निकम्मा किया। चलो जी, जाते जाते इस गाने को आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ। अगर आपका दिल भी कभी निकम्मा हुआ है, सो दिस गाना इज डेडिकेटेड टू योर लव स्टोरी। और ये मत कहना कि यार वो लव स्टोरी तो चली नहीं यार सारा। देखो यार, लव स्टोरी होती है, वो शादी में तब्दील हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यार तो तब भी सच्चा किया ही था ना यार। तो सुनो ये गाना और ये याद रखना कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause it's hot।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसे चॉकलेट्स खत्म कर दे कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
2: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: Who that?
4: Zaheer.
5: Zaheer. Zaheer who?
4: Zaheer si baat hai. Main hi hu, aur koi nahi.
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi,
6: it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: मिर्ची घड़ी में शाम के बज गए 4।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: सलाम नमस्ते कतर वालों, शाम शानदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन मुझे बड़ा ही पसंद है क्योंकि कल होगा हमारा वीकेंड। जी हाँ, 2 दिन हम करेंगे ऐश, रिलैक्स करेंगे, इंजॉय करेंगे घर पे या कहीं घूमने जाएंगे। देखिए, एक तो जो हमारा वीकेंड होता है ना, वो एकदम पलक झपकते ही जैसे खत्म हो जाता है, और उसको अगर हमने वाइजली यूज नहीं किया ना, तो सही में हमारे वो वीकेंड वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ना वेस्ट करते हुए अपने वीकेंड को मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे इवेंट्स जहाँ आप जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, और इतनी तपती गर्मी में इंडोर आपको जो एक्टिविटीज भी बताऊंगी मैं, और आप फुली इंजॉय करेंगे। और आप जब नेक्स्ट वीक जाओगे ना वीकडेज में, एकदम फुली चार्ज होके जाओगे। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब कुछ इधर ही ऑन माय शो। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Murga, murga. Na vida, la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल?
4: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
4: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
5: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
3: कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
8: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
6: हिट गाने कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
6: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: की बात ही अलग होती थी. कॉटन कैंडी खाते थे लेकिन अब तो कॉटन कैंडी बोलते हैं. हमारे टाइम पे उसको बोलते थे बुढ़ी माँ के बाल या बुढ़ी माँ का चाटा. अगर आप भी इस टर्म से रूबरू हैं, आपको पता है कि इसको ऐसा बोला करते थे बचपन में, तो वेलकम. आप भी मेरे ज़माने से हैं. बट मैं आपको बता दूं कि वो जो कैंडी का कलर होता था, कॉटन कैंडी का, इट वाज लाइक पिंक कलर, येलो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते थे. तो मतलब एकदम सोचने पे मजबूर होता था जब व्हेन वी यूज्ड टू ईट इट, अपनी टंग पे रखते थे वो मेल्ट हो जाता था, है ना, वो बिल्कुल शुगर होता था. एंड कितना मज़ा आता था वो खा के, है ना. और आप चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ देखने को भी मिले कुछ ऐसी कैंडी थीम में, तो मैं आपके लिए कैसा इवेंट लाई. जी हाँ, अगर आपको ऐसी कैंडी कलर और ये कैंडी थीम पसंद है तो आपके लिए आ गया है फ्लफी फैंटासिया. जी हाँ, 21 मई से लेके 30 तक ये चलेगा आपके कतर में, एंड इट इज इन मॉल ऑफ कतर. देखिए, सबसे बड़ा इवेंट है ये, बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि यहाँ पे इट विल बी ए लाइव शो जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे इसको इन द मॉर्निंग 9 AM से लेके 11 PM तक ये रहेगा. एंड फ्लफी फैंटासिया विल बी अ फैंटास्टिक, आई थिंक इट्स अ फैंटाबुलस आइडिया टू गो एंड वॉच विद योर किड्स ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे आप एक अलग दुनिया में आ जाएंगे, कैंडी की दुनिया में आ जाओगे. यार किसको नहीं मजा आता. तो एंड ऑल्सो मैंने आपको बता दिया वो इस स्टेज के पास होगा ये, इट्स अ फैंटास्टिक एंड फैंटेसी एक्सपीरियंस. अगर आपको एरोबैटिक्स, डांस या इल्यूजन्स पसंद है तो आपको डेफिनेटली ये जाना चाहिए. एंड फॉर मोर ऐसे इवेंट्स के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्च ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन. इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: बात करें आज के वेदर की तो
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेदर की बात करें तो सनी ही रहेगा आज भी, तापमान बढ़ता ही जा रहा है। 37 डिग्री आज मॉर्निंग में रहेगा और रात में 30 डिग्री तक होगा टेम्परेचर, 7 डिग्री गिर जाएगा। आप लोगों को पता ही है शाम को हल्की फुल्की विंड्स तो चलने लग जाती हैं, थोड़ा बहुत सैर भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
3: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: खट खट।
7: Who that?
6: अगर कर।
7: अगर कर हु?
6: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे।
7: खट खट। Who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन,
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 5, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

गौर फरमाते हैं आज के एक्सचेंज रेट्स की। एक कतरी रियाल इन टू इंडियन रुपीज इज 26.36, एक कतरी रियाल लंकन रुपीज इज 95.65, एक कतरी रियाल नेपाली रुपीज इज 42.22, एक कतरी रियाल पाकिस्तानी रुपीज इज 76.90, एक कतरी रियाल बांग्लादेशी टका इज 33.65। एंड ये थी पैसे की बात, और बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ मेरी
2: जी बोल रहा हूँ
3: हाँ जी भाई संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ आपको थाना आना पड़ेगा
2: क्यों
3: मैं आपको यही बता रहा हूँ आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर
2: जी गए थे जी
3: आपने धरने पे बैठे थे आप
2: जी बैठे थे
3: वहाँ पे लाठी वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था सबके लाठियाँ पड़ी थी आपके रह गई हैं आपकी तीन लाठियाँ लगनी है यहाँ आके लगवा लो जल्दी से
2: हाँ बताओ जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे
3: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई कैसा मैं ये नहीं जानता जस्टिस आप वहाँ पे गए थे आप इस बात को मान रहे हो
2: जी जी गए थे जी
3: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे
2: जी जी
3: आपके पड़ी लाठी कोई
2: मेरे तो नहीं पड़ी
3: वही तो मैं कह रहा हूँ आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे वो वहाँ चले जाओ वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी आपके पड़ी नहीं आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से
2: सर आप नाराज क्यों
3: नहीं नाराज क्योंकि बात है बताइए हाँ बताओ
2: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था कहाँ पे बहुत दूर था सर लाठी
3: तो वही तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई
2: बहुत दूर था सर
3: भाई इतने मैं यही तो कह रहा हूँ बहुत दूर खड़े थे आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती
3: वही तो मैं कह रहा हूँ यार आप बच गए तीन लाठियां रजिस्टर पे चलाइए अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी
2: सर नाराज क्यों है मैं
3: नहीं
2: तो...
3: नाराजगी की तो बात है
2: मैं दोस्तों के कहने पे गया
3: तो अब मैं आपसे मैं भी आपका दोस्त हुआ आपको आ जाओ तीन लाठियां मारेंगे आपके छोड़ देंगे आपको यार क्या परेशानी है वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी इसलिए मारनी है भाई जल्दी आ जाओ भाई यार
2: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
3: यार नहीं नहीं यार मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई इस बात समझ में नहीं आ रही लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है बहुत दूर था
2: नाराज
3: वाली बात है यार ओके चलो लाठी मत करो लाठी नहीं मारेंगे मुर्गा बन जाओ संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी हालांकि वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
2: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
6: तो सिर्फ छोरे करें
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: बचपन में ना एक टॉफी आती थी, उसका नाम था मेलेडी, और उसका एक जो टैगलाइन था ना वो था, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। और अगर आपने नहीं खाई है ना तो अफसोस हो रहा है मुझे, क्योंकि वो हमेशा हर एक से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। लेकिन अगर आपको चॉकलेट के साथ साथ ड्राइंग का भी बहुत शौक था, फैब्रिक डेकोरेशन का भी बहुत शौक था, तो आपके लिए एक ऐसी वर्कशॉप और एक ऐसा इवेंट धासू सा लेके आई हूँ। जी हाँ, आपको बता दूं कि लैंडस्केप ड्रॉइंग विद फैब्रिक डेकोरेशन आपके कतर में हो रहा है, नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में, 23 मई को हो रहा है ये, 4 PM to 6 PM। अगर एंट्री करना चाहते हैं फ्री में तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड दैट इज mathaf.org.qa पे आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, टोटली एक्सेस फ्री होगा, वर्कशॉप अटेंड करिए। तो अगर आपके ये शौक अभी भी है ना तो भाई उसको जाने मत दीजिए, जरूर टाइम निकाल के जाइए, बिकॉज ऐसे इवेंट्स जो होते हैं ना ये बड़े ही नॉलेजेबल होते हैं और बड़े मजेदार होते हैं। जाइएगा जरूर और जानने की कोशिश करिएगा कि मेलेडी इतनी चॉकलेट क्यों है। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 में शिवानी, इट्स हॉट
1: Sham Shandar, brought to you by Kim's Health Medical Center.
2: Mirchi Stories. Stories.
3: Bas 24 ghante hi rahengi.
0: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
0: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो।
1: मिर्ची, इट्स हॉट। कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
1: अभी कॉल करें 3100813।
6: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: ईशांत।
5: ईशांत कौन?
4: ईशांत गदाधारी भीम। ईशांत
5: खट खट, हु दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: देखिए आजकल के पेरेंट्स ना बहुत वरीड हो जाते हैं जल्दी कि बच्चे का करियर हम कैसे देखें, कैसे चेक करें और क्या हम लोग इम्पोर्टेंट मेजर्स लें अपने बच्चों के करियर के लिए। तो अगर आप भी वो वरीड पेरेंट है ना, तो आप अपनी फिकर जो है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आ चुका है कतर एजुकेशन लीडरशिप एक्सो 2026। रेडिसन ब्लूम होटल में हो रहा है ये, 23 मई से लेके 24 मई तक है, एंड 8 AM टू 6:30 PM आपको ये मिलेगा, एंड फ्री एंट्री है। आप रजिस्टर करके जाइए edu.expo.qatar.com पे, आपने आपको रजिस्टर करके जाइए, टोटली फ्री रहेगा। बट मेन मुद्दा इसका जो एम है, दैट इज कि स्टूडेंट जो सोचते हैं फ्यूचर में कि क्या करियर उनके लिए ऑप्शंस हैं, क्या गाइडेंस ले सकते हैं, उसके अलावा स्कॉलरशिप्स एंड काउंसलिंग अगर उनको चाहिए है तो वो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कनेक्ट कर सकते हैं 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज के साथ यहाँ पे, एंड उसके अलावा आपको मिलेगी यू नो फ्यूचर रेडी टेक वहाँ पे मिलेगा, एंड मार्केट सिग्नल्स, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो आगे सीख कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन के लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से सवाल होते हैं, ये सब आपका अंडर वन रूफ सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो जरूर जाइएगा 23 मई या 24 मई को, जा सकते हैं रेडिसन ब्लू फॉर दिस ब्यूटीफुल एक्सपो फॉर द अपकमिंग जनरेशन। एंड ऑल्सो अब मेरा टाइम हो चुका है जाने का, आपसे लेती हूँ अलविदा, आपसे मिलूंगी जल्द ही, एंड ऑल्सो वीकेंड पे तो मैं आपसे मिलूंगी ना। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: Sham Shandar, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

0: वीकेंड आ गया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफिशियली सीन पे चली गई। वेलकम टू क्लब मिर्ची पीपल, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योनतिका बैक अगेन विद दिस वीकेंड पार्टी डेस्टिनेशन। हे पार्टी स्क्वाड, वॉल्यूम को फुल करो, डीजे रिचर्ड के साथ मूड उठने वाला है सीधे 100 आसमां के ऊपर। लाइट्स ऑन, ड्रामा ऑन एंड वीकेंड का सीन शुरू करे, लेट्स गो।
1: When I met you in the summer,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La virtuala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Yes.
4: Water से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी.
4: Madam, please किसी mechanic को बुला देंगे, मेरी गाड़ी out of control हो गई है.
3: ठीक है sir.
4: 5 seconds जल्दी.
5: इतने में तो accident हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
4: Please जल्दी बुला लो मुझे.
3: Sir, ये कोई customer के लाये गाड़ी है. हेलो
4: हेलो होल्ड नहीं कर सकता. हेलो
6: हाँ जी सर.
4: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
6: सर हैंड ब्रेक खींच दो.
4: एक सेकंड
6: सर हैंड ब्रेक खींच दो. सर
4: एक सेकंड रुकिए
6: सर. साइड में है, लेफ्ट साइड में.
4: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, अगर रोज का था मैं कैसे रुकूं. एक सेकंड
6: सर इग्निशन ऑफ कर दो.
4: इग्निशन एक सेकंड रुकिए. ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं.
6: हाँ जी.
4: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
6: ऐसे मेरे को क्या पता कहाँ पे है.
4: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से.
6: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो.
4: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा है. एक सेकंड कुछ और, ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं.
6: हाँ जी.
4: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए.
6: बिल्कुल गए. एक्सेलरेशन छोड़ दो सर.
4: क्या करूं?
6: एक्सेलरेशन छोड़ दो.
4: एक सेकंड रुके.
6: क्या हो गया?
4: गाड़ी ठुक गई.
5: मैडम क्या नाम है आपका?
3: दिव्या.
5: दिव्या मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने.
3: I was so tense, I thought, what happened?
7: मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
8: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
7: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
8: बार बार.
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
9: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइन्स सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
10: मिर्ची स्टोरीज.
11: बस 24 घंटे ही रहेंगी.
12: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए.
13: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है. और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
12: क्या होता?
13: रोड साइड रोमियो.
7: मिर्ची, इट्स हॉट.
14: अर्ज किया है
15: इरशाद.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
2: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा.
1: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
3: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
4: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी. ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
5: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 707076 87.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldar.
2: Only on Mirchi. It's hot.
6: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go
8: on a ride.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
3: मिर्ची घड़ी में बज गए 7 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

वीकेंड का हार्ट ब्रेक भी ग्लैमरस लगता है क्योंकि बैकग्राउंड में बीट बज रहा है, राइट? क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, तो चलो दिल पर एक साथ डांस फ्लोर पे आ जाए।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज।
2: गुड इवनिंग
3: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से।
2: ओके
3: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे। राइट तो सर, आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे। राइट सर, मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
2: फोर।
3: वेट सर, वेट,
2: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
3: सर यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा। दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
2: डर जाएगी।
3: गुड सर, वेरी गुड सर।
2: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब से है नहीं
3: सर, आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान।
2: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
3: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं। पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले।
2: पूछो यार।
3: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
2: पूरे 100।
3: ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट। सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर, पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
2: जेल में जाना पड़ेगा।
3: ग्रेट सर, ग्रेट। रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
2: समझा नहीं मैं।
3: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा। मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था। जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन।
11: इट्स हॉट।
12: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार. तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए.
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है. और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो.
5: मिर्ची, इट्स हॉट.
6: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
7: दोस्ती का कुछ सुले मैडम. नो सॉरी नो थैंक यू.
8: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
9: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
10: खूब मिलेगा, मिलेगा.
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन.
13: इट्स हॉट.
14: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

सबका एक दोस्त है जो खुद को इंटरनेशनल परफॉर्मर समझता है। इन बिटवीन ब्रेक्स आवन और जावन के बीच में एक इंटरनेशनल ट्रैक आपके लिए, गाने का नाम है जेरुसलेमा।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood Bordal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal. Only on Mirchi. It's hot.
5: Khat khat.
6: Kaun hai?
5: Dave.
6: Dave kaun?
5: The way you love me. I hai mar jawa.
6: Khat khat. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1.
2: Mirchi.
7: It's hot.
8: Ladies and gentlemen. We are gonna go.

नर्चर्ड है म्यूजिक का बादशाह। मुन्नी का नाम है मिर्ची ओयोंती का। क्लब मिर्ची जा रही है दोस्तों। Oh, no, no, no, no.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, फरमाइए। बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी, आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में रात के 8 की पारिंग विद क्लब मिर्ची।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

एक दोस्त जरूर होता है जो हर गाने पे बोलता है, अरे ये तो मेरा सॉन्ग है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो दिका, लेट्स गो सैयारा।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहा हूँ। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है, इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है, हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1, it's hot.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Ritchie stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार. तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए.
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है. और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो.
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6 FM, Mirchi 1.
9: It's hot.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वीकेंड पे आंखें खुली हो या बंद, सपने सब डांस फ्लोर वाले ही आते हैं। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, वेलकम बैक पीपल। चलो फिर से करें मोहब्बतें।

0: Hot Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
3: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोलडाल.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
5: Ladies and gentlemen.

वीकेंड का हार्ट ब्रेक भी ग्लैमरस लगता है क्योंकि बैकग्राउंड में बीट बज रहा है, राइट? क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, तो चलो दिल पर एक साथ डांस फ्लोर पे आ जाए।

क्लब मिर्ची जा रही है विद जी रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। पार्टी का ग्राफ अब सीधा ऊपर जा रहा है और नेबर्स का बीपी भी। तो हमारे ताल से ताल मिलाइए और नाचना शुरू कीजिए।

नहीं करेगा, वीकेंड पे सबके अंदर का हिडन परफॉर्मर उसको बाहर लाएंगे और गाने पे नाचेंगे, क्योंकि अरे दीवानो सभी को बनना है डॉन। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, दिस इज टू इनफिनिटी डांसिंग, लेट्स गो।

0: वाली कार्डियो, जिम नहीं है बॉस, तीन गाने बैक टू बैक पे डांस करना, जब गाना बजेगा लेजी लम्हे, लेजीनेस का तो जगह ही नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची एंड मिर्ची ऑन ओंतिका राइट नाउ, जॉइन अस ऑन द डांस फ्लोर।
1: डामी उन गर
2: उनके
1: उन गर
2: उनके
1: डामी उन टिक टिक
2: ओके।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline?
2: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
2: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: मिर्ची घड़ी में बच गए।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi murga.
3: हेलो
4: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ। मेरी
3: बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी भाई संतोष, यहाँ थाने से बोल रहा हूँ। आपको थाना आना पड़ेगा।
3: क्यों?
4: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
3: गए थे जी।
4: आपने धरने पे बैठे थे? आप
3: जी बैठे थे।
4: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं, आपकी तीन लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
3: हाँ बताओ। जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
4: जस्टिस? कैसा जस्टिस भाई, कैसा? मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
3: जी जी गए थे जी।
4: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
3: जी जी।
4: आपके पड़ी लाठी कोई?
3: मेरे तो नहीं पड़ी।
4: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार, तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबके लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
3: सर आप नाराज क्यों?
4: नहीं नाराज क्यों की बात है, बताइए। हाँ बताओ।
3: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था। कहाँ पे? बहुत दूर था सर लाठी।
4: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई? बहुत दूर था,
3: बहुत दूर था
4: भाई। इतने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप। आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
3: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
4: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए, तीन लाठियां रजिस्टर पे चढ़ाई, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
3: सर नाराज क्यों है?
4: नहीं
3: तो
4: नाराजगी की तो बात है,
3: मैं दोस्तों के कहने पे गया।
4: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, तीन लाठियां मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार, क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई, जल्दी आ जाओ भाई।
3: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
4: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप, हैं? मेरे को तमीज सिखा रहा है, मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई। इस बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था, उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है,
3: वो
4: बहुत दूर था। नाराज वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ।
5: संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तुम अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
3: कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
1: 89.6
0: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना।

होनी चाहिए जहाँ दो चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाए, एक बीट, दूसरी एक्साइटमेंट। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, वेलकम बैक। कयामत करेंगे फ्रॉम हाउसफुल 5, लेट्स गो।

श्रेया घोषाल विद थोड़ी सी दारू. हाँ ठीक है, पर नॉट ड्राइविंग व्हाइल थोड़ी सी दारू इज इनसाइड ऑफ यू. ओके, हैव फन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज तुम हो तो लव मिर्ची पे मस्ती है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
4: ऑन अ राइड।
0: Mirchi.

वीकेंड का हार्ट ब्रेक भी ग्लैमरस लगता है क्योंकि बैकग्राउंड में बीट बज रहा है, राइट? क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, तो चलो दिल पर एक साथ डांस फ्लोर पे आ जाए।

और इसी फिल्मी हंगामा के साथ डीजे रिचर्ड और मिर्ची ओयोंतिका बोल रहे हैं वीकेंड को ओवर एक्ट करो क्योंकि मंडे वैसे भी विलन बन के ही आएगा. बट बिफोर वी साइन ऑफ हियर्स अ किलर ट्रैक, दे कॉल इट मर्डर, मर्डर बाय मॉफी, रिक्रिएटेड फ्रॉम अ 90s रेगे ट्रैक बाय इना कमोजी. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका ऑफिशियली गेट्स ओवर फॉर द डे. टाटा.

वीकेंड आ गया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफिशियली सीन पे चली गई। वेलकम टू क्लब मिर्ची पीपल, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योनिका बैक अगेन विद दिस वीकेंड पार्टी डेस्टिनेशन। हे पार्टी स्क्वाड, वॉल्यूम को फुल करो, डीजे रिचर्ड के साथ मूड उठने वाला है सीधे 100 आसमां के ऊपर। लाइट्स ऑन, ड्रामा ऑन एंड वीकेंड का सीन शुरू करे।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
2: गुड इवनिंग
3: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
2: ओके
3: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं. हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
2: टू टू जा फोर.
3: वेट सर, वेट.
2: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
3: सर यही पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
2: डर जाएगी.
3: गुड सर, वेरी गुड सर.
2: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
3: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
2: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
3: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
2: पूछो यार.
3: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90
2: पूरे 100.
3: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषम मावे पोषम पाल, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
2: जेल में जाना पड़ेगा.
3: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
2: समझा नहीं मैं.
3: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. 89.6 मिर्ची.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
3: का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: भट्ट अरे भट्ट हूँ
2: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है
1: खट खट हू दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट
4: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो
5: ऑन अ राइड

0: वीकेंड ऑफिशियली एंट्री मार चुका है। जो लोग बोलते थे इस बार घर पे चिल करेंगे, वो भी आप डांस फ्लोर के जीपीएस पे ही मिलेंगे। लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, ब्लू आईज ऑन योर रेडियो सेट्स राइट नाउ।
1: प्रिंसिपल बिग बिग शो के फैन है।

कॉमेडी स्क्वाड में एक दोस्त जरूर होता है जो हर गाने पे बोलता है, अरे ये तो मेरा सॉन्ग है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, लेट्स गो सैयारा।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
2: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Ritchie Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार. तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए.
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है. और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो.
5: मिर्ची, इट्स हॉट.
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा.
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन.
11: इट्स हॉट.
12: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो.

दोस्त है जो खुद को इंटरनेशनल परफॉर्मर समझता है। इन बिटवीन ब्रिक्स आवन और जावन के बीच में एक इंटरनेशनल ट्रैक आपके लिए, गाने का नाम है जेरुसलेमा।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
4: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Cut, cut.
7: Who there?
6: Whom are you?
7: Whom are you who?
6: Arre, whom are you looking for, madam?
7: Cut, cut. Who there?
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go.
9: On a ride.

वीकेंड ऑफिशियली एंट्री मार चुका है। जो लोग बोलते थे इस बार घर पे चिल करेंगे, वो भी आप डांस फ्लोर के जीपीएस पे ही मिलेंगे। लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, ब्लू आईज ऑन योर रेडियो सेट्स राइट नाउ।

डांस फ्लोर का बादशाह कौन है? वही तो है असली बात, डीजे रिचर्ड है म्यूजिक का बादशाह। मुनी का नाम है मिर्ची ओयोंते का, क्लब मिर्ची जा रही है दोस्तों। Oh, no, no, no, no.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Ritchie Helpline.
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
2: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are going to go.

में एक दोस्त जरूर होता है जो हर गाने पे बोलता है, अरे ये तो मेरा सॉन्ग है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो दिका। लेट्स गो सैयारा।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तो सिर्फ चोरे करें।
2: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
4: कम है के?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 89.6 89.6 FM Mirchi 1 It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are

up, Mirchi, with DJ Richard and Mirchi. Oi, Ontika, baby. No, not just baby. Let's say, hey, baby. कल क्या होगा वो मंडे सोचेंगे, आज से वाइब चेक होगा. और गाने का नाम है मस्त कलंदर. Let's go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार. तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए.
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है. और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो.
5: मिर्ची, इट्स हॉट.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

आंखें खुली हो या बंद, सपने सब डांस फ्लोर वाले ही आते हैं। क्लब मिर्ची में डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, वेलकम बैक पीपल। चलो फिर से करें मोहब्बतें।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: रजा मुराद जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi, it's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
6: On a ride.

क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। पार्टी का ग्राफ अब सीधा ऊपर जा रहा है और नेबर्स का बीपी भी। तो हमारे ताल से ताल मिलाइए और नाचना शुरू कीजिए।

करेगा वीकेंड में सबके अंदर का हिडन परफॉर्मर, उसको बाहर लाएंगे और गाने पे नाचेंगे, क्योंकि अरे दीवानो सभी को बनना है डॉन। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका, दिस इज टू इनफिनिटी डांसिंग, लेट्स गो।

0: वीकेंड का असली कार्डियो जिम नहीं है बॉस, तीन गाने बैक टू बैक पे डांस करना, जब गाना बजेगा लेजी लम्हे, लेजीनेस का तो जगह ही नहीं है। क्लब मिर्ची मिर्ची जब चुआ दिन मिर्ची ऑन योर दिका राइट नाउ, जॉइन अस ऑन द डांस फ्लोर।
1: डामी उन गर
2: उनके
1: उन गर
2: उनके
1: डामी उन
2: ओके
1: डामी उन

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

वीकेंड ऑफिशियली एंट्री मार चुका है। जो लोग बोलते थे इस बार घर पे चिल करेंगे, वो भी आप डांस फ्लोर के जीपीएस पे ही मिलेंगे। लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, ब्लू आईज ऑन योर रेडियो सेट्स राइट नाउ।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Gabbana. Murga, murga. Love is bala murga. Mirchi murga.
3: हेलो
4: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ मेरी
3: जी बोल रहा हूँ
4: हाँ जी भाई संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ आपको थाना आना पड़ेगा
3: क्यों
4: मैं आपको यही बता रहा हूँ आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर
3: गए थे जी
4: आपने धरने पे बैठे थे आप
3: जी बैठे थे
4: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था सबके लाठियाँ पड़ी थी आपके रह गई हैं आपकी तीन लाठियाँ लगनी है यहाँ आके लगवा लो जल्दी से
3: हम तो जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे
4: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई कैसा मैं ये नहीं जानता जस्टिस आप वहाँ पे गए थे आप इस बात को मान रहे हो
3: जी जी गए थे जी
4: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे
3: जी जी
4: आपके पड़ी लाठी कोई
3: मेरे तो नहीं पड़ी
4: वही तो मैं कह रहा हूँ आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे वो वहाँ चले जाओ वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी है आपके पड़ी नहीं आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से
3: सर आप नाराज क्यों
4: नहीं नहीं नाराज क्यों की बात है बताइए हाँ बताओ
3: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था कहाँ पे बहुत दूर था
4: तो वही तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई बहुत दूर
3: था सर
4: भाई तने मैं यही तो कह रहा हूँ बहुत दूर खड़े थे आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ
3: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती
4: वही तो मैं कह रहा हूँ यार आप बच गए तीन लाठियाँ रजिस्टर पे चढ़ाई अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी
3: सर नाराज क्यों है
4: मैं नहीं
3: तो
4: नाराजगी की तो बात है
3: मैं दोस्तों के कहने पे गया
4: तो अब मैं आपसे मैं भी आपका दोस्त हुआ आपको आ जाओ तीन लाठियाँ मारेंगे आपके छोड़ देंगे आपको यार क्या परेशानी है वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी इसलिए मारनी है भाई जल्दी आ जाओ भाई
3: मैं आ जाऊंगा
4: यार नहीं नहीं यार मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई इस बात समझ में नहीं आ रही लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियाँ तुम्हारे नाम की है
3: वो
4: बहुत दूर था नाराज वाली बात है यार ओके चलो लाठी मत करो लाठी नहीं मारेंगे मुर्गा बन जाओ संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: मिर्ची वन इट्स हॉट Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride.
0: Club Mirchi with Oil Hundika and T.

ऐसी होनी चाहिए जहाँ दो चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाए, एक बीट दूसरी एक्साइटमेंट। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची और मिर्ची ओयोंतिका, वेलकम बैक। कयामत करेंगे फ्रॉम हाउसफुल 5, लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार. तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए.
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है. और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो.
5: मिर्ची, इट्स हॉट.
6: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा.
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
9: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
10: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 707076878.
11: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दे कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
3: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut, cut.
6: Who that?
5: Akbar.
6: Akbar who?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे.
6: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

从袜里。

मिर्ची एवरी वीकेंड डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑयल देगा आपके साथ जहां आपको इस सोनी दे नखरे सोने लगे है कि नहीं।

डीजे रिचर्ड और मिर्ची ओयोंदे का बोल रहे हैं वीकेंड को ओवर एक्ट करो क्योंकि मंडे वैसे भी विलन बन के ही आएगा. बट बिफोर वी साइन ऑफ हियर्स अ किलर ट्रैक, दे कॉल इट मर्डर, मर्डर बाय मॉफी, रिक्रिएटेड फ्रॉम अ 90s रेगे ट्रैक बाय इना कमोजी. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंदे का ऑफिशियली गेट्स ओवर फॉर द डे. टाटा.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

89.6 Mirchi 1. It's hot.